दुनिया की सारी कमी आप सह सकते हैं, लेकिन पूजा सामग्री से जुड़ी हुई कमी नहीं चलती है। घर के बच्चे तो घर के बड़ों से इसी टॉपिक पे डांट खाते रहते हैं। सो मैं आरजे निपर मसी मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी, इस कमी को पूरा करते हुए पूजा की सामग्री हो गया और आने वाली गणेश चतुर्थी को और ज्यादा खास बनाने का जो जिम्मा है ना, वो उठा लिया है ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप ने। एंड यहाँ पर आपको हर तरह के गणेश जी के जो वैरायटीज हैं वो मिल जाएंगी, छोटे से लेकर बड़े तक। एंड डेफिनेटली नेचर को ध्यान में रखकर आपके लिए एन नंबर ऑफ वैरायटीज, एन नंबर ऑफ वो कहते हैं ना कलर कॉम्बिनेशंस, हर तरह के स्वरूप गणेश जी में मिलने वाले हैं। लॉग ऑन कीजिए ज्योति.com.sg। मैं आरजे नूपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ है।

0: বাইকি দানে মামা
1: জুটি
2: লাস্ট টাইম মে উঠা তা না
1: মে উঠি মে উঠতা
3: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
4: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन
5: जोश में रहो।
6: आपको डर लगता है? अरे लगता तो होगा, लेकिन बस आप किसी को बताते नहीं है, आप मान नहीं रहे। मैं मतलब भूत और भूतनी वाले डर की बात नहीं कर रही हूँ। आप कहीं खड़े हो, अपना ध्यान मगन करके कोई काम कर रहे हो, मैं पीछे से आकर बोल दूँ भौ, तो आप डरोगे ना?
7: अरे डर जाओगे यार, डर जाओगे। झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। सो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आज आपके साथ। और देखिए, सबके अंदर कोई ना कोई डर तो होता है। हाँ, और मैं इस पर बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं देने वाली हूँ, बस इतना बोलने वाली हूँ कि ये जो डर के इंसिडेंसेस है ना, इनको उठाकर भी मूवीज बनती हैं और बनती रहेंगी। और रियल इंसिडेंसेस जो उठाए जाते हैं भाई साहब, वो जानने लायक होते हैं। सो रिसेंटली अगर हम महाराष्ट्र के एक गांव की बात करें तो उसका नाम है आम्रवती, राइट? एंड वहां पे हुआ क्या कि करीबन 608 बच्चे जो है ना, वो गवर्नमेंट के हॉस्टल में रहते थे, ठीक है? और वहाँ पर रहते रहते उनका मतलब पढ़ाई वगैरह से लेके सब कुछ देखा जाता था। सो वहाँ पे ना धीरे धीरे पता चला कि रात में ना घुंघरू की आवाज़ आती है, घुंघरू की, राइट? और ये आवाज़ बढ़ती गई और ये रोज़ आने लगी। तो ये जो घुंघरू की आवाज़ आने लगी, उस वजह से ना वहाँ पर अफवाह फैल गई कि भाई वहाँ पे कोई भूत भूतनी का जो है ना, वो रहने का मतलब ये जगह बन चुकी है। सो डेफिनेटली 600 प्लस स्टूडेंट्स ने एक साथ उस हॉस्टल को ना खाली कर दिया, कोई नहीं चाहता वहाँ रहना। तो देखो, ये कंटेंट मिल गया ना एक मूवी बनाने के लिए। हाँ, आज ये रुपर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल।
8: You're tuned into Radio Musti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: जोर सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: कोई भी काम आप पहली बार करते हैं ना, तो आप सुपर प्राउड फील करते ही करते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं फील कर रहे हैं, तो कमी काम में नहीं, आपके अंदर है कि आपको सेलिब्रेट करना नहीं आता है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे अनुपम आपके साथ, और आपके अंदर की गड़बड़ को दूर करने के लिए आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आपको ना दूसरे का इंतजार नहीं करना है। आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर चुके हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं, इसका सेलिब्रेशन आपको खुद ही कर लेना चाहिए। कुछ ना समझ में आए तो सिंगापुर में इतने प्यारे प्यारे रेस्टोरेंट हैं, वहाँ अकेले जाके डिनर कराओ, लंच कराओ, ब्रंच कराओ, जो भी आपका मन हो कुछ तो करो। हैव योर लाइफ यार। हाँ, बाय द वे ऑन दिस थॉट, वरुण धवन ने काम कर लिया है। हाँ जी, रिसेंटली उन्होंने अपनी हार्ड अर्न्ड इनकम से एक बड़ा लैंड खरीदा है। हाँ जी, एक फार्म लैंड खरीदा है, और उन्होंने इसका जिक्र सोशल मीडिया पे करके अपने आप को प्राउड भी फील कराया है, और बताया है कि भैया बिगेस्ट अचीवमेंट उनकी लाइफ का ये है। अरे वाह, अरे वाह। तो भाई, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज क्या कुछ नहीं शेयर करना चाहते, लेकिन हाँ, वरुण धवन ने किया है तो जेन्युइन ही किया होगा। बस बंदे की एक्टिंग में थोड़ा सा डाउट आप कर लेते हो, अदरवाइज ये इंसान अच्छे हैं। हाँ, आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
0: कोई आवाज, कोई साज, सिनेमा की दुनिया के किस्से, रुलाते हंसाते उदासी भरे खिलखिलाते किस्से समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता
2: था। तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर,
3: You know what? Once in a while जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना वो हमें एक्चुअली सरप्राइज करता है। मतलब प्लानिंग श्लानिंग तो पहले से चल रही होगी लेकिन हमारे कानों तक अगर लेट आता है ना तो बस हमारे लिए तो वो सरप्राइज ही है। हाँ, सो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। और ये वंस इन अ वाइल वाला जो सरप्राइज है वो हमें मतलब रिसेंटली मिला जब संजय दत्त एंड सलमान खान एक अरबी बेस्ड मूवी मतलब मिडिल ईस्ट पर जो बेस्ड मूवी है और वहीं शूट हुई है, वहीं के डायरेक्टर्स हैं, विल स्मिथ वगैरह भी हैं, मूवी का नाम है 7 डॉग्स, उसमें ये दोनों नजर आए। वैसे इनका रोल बहुत छोटा है पर कॉन्शियस सा है। सो डायरेक्टर्स ने बोला है कि संजय दत्त और सलमान खान, स्पेशली सलमान खान, अपने आप में सुपर स्टार्स क्यों है, क्योंकि ये अपना एक्सपीरियंस लेकर सेट्स पर आते हैं और आपको आगे से बहुत सारे सजेशंस भी देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो, तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। सो ये जो प्रोफेशनलिज्म है ये सब में नजर नहीं आता। हाँ, जो बाहर के डायरेक्टर्स को सलमान और संजय दत्त में नजर आया। वैसे नजर तो आ रही है मुझे भी बहुत सारी बातें जो मैं आपसे खुलकर करूंगी, लेकिन एक चीज आपको नजर आ रही होगी कि आपका नेम चेंज हो चुका है। हाँ जी, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव का नाम हो चुका है मस्ती मीडिया 24/7 एंड फेसबुक पर आप हमें रेडियो मस्ती 24/7 या मस्ती मीडिया नाम से ढूंढ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मस्ती मीडिया 24/7। नाम तो बदलते रहते हैं यार, काम नहीं बदलने चाहिए। मस्ती मॉर्निंग शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।
4: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपर्ट इंडियंस, एनीटाइम एनीवेयर।

0: दस का बीस।
1: अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 PM onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: देखो, घर की लड़ाई पहले थोड़ी सी बाहर आई थी, फिर और बाहर आई थी, फिर वो रियलिटी शोज तक भी पहुंच गई थी, पेपराजी फोटोग्राफर्स तक पहुंच गई थी, और अब तो वो मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुकी है। सो रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ बताना चाहूंगी कि किसी की नई शादी नहीं होने वाली है, बल्कि शादीशुदा लोग इतनी ज्यादा लड़ाइयां कर रहे हैं कि चीजें वर्स्ट होती जा रही हैं। सो एक तरफ में गुड न्यूज ये आ रही थी कि सुनीता आहूजा यानी गोविंदा की जो वाइफ है ना, वो उनसे डिवोर्स फाइल कर चुकी हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी जो डिवोर्स पिटिशन है उसको विड्रॉ कर लिया है, मतलब डिवोर्स लेने से मना कर दिया है। तो सबको लगा कि भैया मानस बन गया होगा, मन बदल गया होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा। वही पता चला कि वो इसलिए बदली क्योंकि गोविंदा जो है वो किसी और से शादी करने वाले हैं, और अगर वो ये डिवोर्स नक्की करवा देती तो वो बहुत आराम से लीगली कहीं और शादी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने बैक स्टेप लेते हुए चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दी। सो डेफिनेटली ये जो चीजें निकल कर आ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि इसका अंजाम क्या होगा। तो बहुत दिन हो गए हैं कि इनकी लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आज आपके साथ, और मैं तो ऐसी ऐसी चीजों के नाम लूंगी कि आपको मजा ही आ जाएगा। सो डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल।
1: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में
2: भाई राइट टू प्राइवेसी बहुत सारे लोग सिर्फ जानते हैं पर समझते नहीं हैं। पर हाँ इसमें भी एक बात निकल कर आती है कि राइट टू प्राइवेसी को लोग ले किस तरह से रहे हैं। सो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ एंड डेफिनेटली कोई अचानक से आकर आपकी फोटो वीडियो लेने लगे आपके बारे में खुलेआम बताने लगे यूट्यूब पे तो आपको कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना। मतलब सिंगापुर में तो कोई ये सहन कर ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। पर इंडिया की अयोध्या सिटी में गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए इस रूल को निकाल दिया गया है। हाँ जी, वहाँ अचानक से आप कैमरा लेकर पहुंच जाएंगे, अचानक से टीचर्स और बच्चों की फोटो वीडियो निकालने लगेंगे, अचानक से गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल बताने लगेंगे, तो दोनों तरह से चीज़ें जो हैं वो बैन कर दी गई हैं। मतलब आप बिना परमिशन के अगर इन प्रिमाइसिस में चले गए तो आपके ऊपर लीगली एक्शन लिया जाएगा। सो अब जो है गवर्नमेंट अपने पे आ चुकी है और कह चुकी है कि सुनो सुनो सुनो, ज्यादा हो गया अब तो, ये अब ये पानी सर के ऊपर निकल रहा है। हाँ आरजे नुपुर दिस साइड मस्ती मॉर्निंग शो आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर, मेरी जान, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट व्हाइल।
3: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपर्ट इंडियंस, एनीटाइम एनीवेयर।

0: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space. Dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स, मेरी जान।
2: You know what, एक ऐसी जगह जहां आप दिमाग की बातें कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, मतलब करने को आप दिमाग भी यूज कर रहे हैं लेकिन आपके चेहरे पर स्माइल, आप एंटरटेन हो रहे हैं, आपको एक बढ़िया क्वालिटी कलीग्स के संग भी वक्त मिल रहा है, दोस्तों के साथ भी मिल रहा है और फैमिली के साथ भी मिल रहा है। सो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप खुद को एंटरटेन कर सकते हैं। सो डेफिनेटली लाइव सिंगापुर में सुहानी शाह का शो आने वाला है स्पेल बाउंड, जिसमें माइंड रीडिंग, मेंटलिज्म एंड इम्पॉसिबल एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे। डेट रहेगी, टाइम निकाल लेना, 20th September, संडे वाला दिन है, 6 PM ऑनवर्ड्स आपको इन्विटेशन दे रही हूँ। टिकट्स के लिए सिस्टिक सिंगापुर आप विजिट कर सकते हैं। वेन्यू रहेगा क्रेटा अय्यर पीपल्स थिएटर, क्रेटा अय्यर रोड, सिंगापुर। फिलहाल मैं आज मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, और भी प्लान बनाएंगे और इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। चलो

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
1: कुछ वक्त पहले ना मैंने किसी को गोल गप्पे वाली जो पार्टी होती है ना, हाँ कोई इंडियन हाउस ही था, वहां पे ऑर्गेनाइज करते हुए देखा और मैं खुद भी पहुंच गई। सो उन्होंने मल्टीपल वैरायटीज है ना, एज पर द इंडिया नॉर्म्स उन्होंने वो गोल गप्पे के अंदर आलू भरने वाला जो वैरायटी है वो भी रखा था, और अंदर चने भरने वाला जो वैरायटी होता है वो भी रखा था, और उन्होंने एक तीसरा ऑप्शन भी रखा था, एवोकाडो होता है ना, हाँ उसका एक बहुत ही प्यारा सा एक चटनी बना करना वो भी उसके अंदर डालने के लिए रखा हुआ था। मतलब आप हर तरह के इंडियन एंड विलायती मिक्सचर को एंजॉय कर सकते थे वहाँ पर। सो ये जो फ्यूजन है ये फूड में तो बहुत खूबसूरत निकल कर आता है, लेकिन मूवीज़ में भी बहुत खूबसूरत निकल कर आता है।

केयर, आई लव यू, सी यू सून मेरी जान. मिलते हैं कुछ और भी बातचीत और हालचाल के साथ. टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. बाय बाय, टेक केयर.

0: डीजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए ड्यूटी पर। Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
1: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. DJ.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: सम शोज डोंट जस्ट प्ले, दे स्टे विद यू, एंड व्हेन आवर लिसनर्स आस्क फॉर मोर वी ब्रिंग देम बैक। Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
3: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
4: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
5: Namaste, bahnor bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: नाचने का मन है?
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.
4: ना
5: करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: ज्यादा समझ लेता है. सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से.
1: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन. फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हेलो हेलो हेलो सिंगापुर, क्या हाल चाल। रेडियो मस्ती पर वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दीजिए क्योंकि मस्ती हैंगआउट में आपका दिल से वेलकम है। दिस इज मी मुग्धा आपके साथ और अगली कुछ देर, इनफैक्ट प्रिसाइसली 3 आवर्स आप मेरी कंपनी में यहाँ पर रहने वाले हैं और साथ में होगी द कंपनी ऑफ म्यूजिक। देखो भाई, आपका दिन कैसा भी चल रहा हो, थोड़ा हेक्टिक, थोड़ा लेजी, काम का प्रेशर हो या बस आज के मूड को एक अच्छी सी कंपनी आपको देनी हो चाहिए हो, आप बिल्कुल सही जगह पे आ गए हो। दिस इज द राइट प्लेस। आहा, और कैलेंडर भी कह रहा है कि आज का दिन थोड़ा स्पेशल है। आस्क मी व्हाई। 26 अगस्त है आज, वेंसडे है, मिड वीक है, राइट। आज है वुमेन्स इक्वालिटी डे। कोई मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। बेसिकली एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि अपॉर्चुनिटीज और चॉइसेस जो हैं उन पर किसी का कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। एंड ऑनेस्टली, घर हो, वर्क प्लेस हो, लाइफ का कोई भी डिसीजन हो यार, जब औरतें अपनी जगह खुद बनाती हैं तो उसकी स्टोरीज हमेशा वर्थ सेलिब्रेटिंग होती हैं और होनी भी चाहिए, है ना। और इस सेलिब्रेशन की बात निकली तो एक और रीजन है स्माइल करने का, यू नो व्हाई। आज इंटरनेशनल डॉग डे है, तो अगर आपके घर में कोई तो 4-लेग डॉगो रहता है ना, फैमिली मेंबर है जो आपको देखते आप पूंछ लाता है, आपकी केयर किसी भी और से ज्यादा करता है बिना ये बताए, सिर्फ जता देता है, खाने के टाइम सबसे पहले होता है तो पहुंच जाता है, सबसे पहले पहुंचता है, एकदम पंक्चुअल है वो, अपना डब्बा लेके खुद आता है और सोफा पर आपकी जगह ऑक्यूपाई जरूर करता है, पर जैसे आप आते हो तो आपको थोड़ी बहुत जगह दे भी देता है। सो आज उसकी थोड़ा एक्स्ट्रा पैम्परिंग करना तो बनता है। तो सिंगापुर वॉल्यूम अप, चाय या कॉफी का एक सिप जो भी आप ले रहे हो आराम से लेते रहो। नो हरीज एंड नो वरीज, मस्ती हैंग आउट के साथ आप जुड़े रहिए। म्यूजिक है, बातें हैं, सरप्राइजेस हैं, सबसे इम्पोर्टेंट नए और आप हैं, राइट।

0: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
0: कोई आवाज, कोई साज, सिनेमा की दुनिया के किस्से, रुलाते हंसाते उदासी भरे खिलखिलाते किस्से, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: तो माय डियर सिंगापुरियंस, एक छोटा सा सवाल है। आज बाहर निकलते वक्त आसमान को देखकर आपने क्या नोटिस किया? थोड़ा सा हेजी फील हो रहा था आपको? ऑब्जर्वेशन अगर आपकी ऐसी है तो बिल्कुल भी गलत नहीं है ऑब्जर्वेशन आपकी। हाई वेलकम बैक जिन लोगों ने अभी अभी मुझे ज्वाइन इन किया, मुझे आपको बता दूं कि आप सुन रहे मस्ती हैंग आउट एंड दिस इज मी आरजे मुग्धा आपके साथ। यू नो सिंगापुर में हेज एक बार फिर रिटर्न कर रहा है, बिल्कुल स्पाइडरमैन और सुपरमैन की तरह। सो अकॉर्डिंग टू एनईए, वीकेंड के बाद सुमात्रा और कालीमतान जो है वहां के हॉटस्पॉट्स और स्मोक एक्टिविटीज जो बढ़ी है वहां पे, और ड्राई कंडीशंस हैं, और ये जो कंटिन्यू रहेगी उसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो विंड्स अगर साउथ या साउथ ईस्ट से ऐसे किसी डायरेक्शन में चलती रही तो सिंगापुर में कभी कभी हेज या उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट जो है आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल देखो पैनिक वाली कोई सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। मंडे इवनिंग तक 24 RPSI जो है 70 से लेके 94 के बीच में था, यानी इट वाज इन अ वेरी मॉडरेट रेंज। अनहेल्दी रेंज तब स्टार्ट होती है जब ये 100 क्रॉस करता है, और अथॉरिटीज जो है सिचुएशंस को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है, तो आई एम श्योर कि ऐसा पैनिक सिचुएशन आने से पहले वो सबको बता ही देंगी। वैसे सिंगापुर में ना हेज का नाम सुनते एक बड़ी पुरानी हैबिट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है, वेदर ऐप बाद में PSI पहले चेक करते हैं, है ना। तो आउटडोर प्लान्स हैं, इवनिंग वॉक्स हैं, वर्कआउट का मोड है, एयर क्वालिटी पर एक नजर आप रख लें, वो सेंसिबल रहेगा, पर पैनिक मोड में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। और अब एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने का जो बात हो रही है, एक्सपर्ट्स की बात हो रही है, तो एक्सपर्ट्स पे छोड़ते हैं ना उस काम को। अपना काम देखो बहुत सिंपल है, मेरी बातें सुनो, गाने एंजॉय करो, रेडियो मस्ती के वॉल्यूम को मॉनिटर करो, कहीं कम न पड़ जाए। और जब एनवायरनमेंट की बात हुई है तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में बात किए बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, पर एक ब्रेक के बाद, राइट?

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: माइकी डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
2: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति.com.sg।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: So now, because we were talking about the environment and all, तो मैं आपको बताऊं कि सिंगापुर को हम यूजुअली ना स्काईलाइन बिल्डिंग्स और सुपर एफिशिएंट जो सिटी लाइफ है उससे पहचानते हैं ना। आसमान में रहती है नजरें हमेशा, वो ठीक है, वो हेज के लिए ठीक है, पर फिलहाल नजरें झुकानी पड़ेंगी। सिंगापुर की पूरी दुनिया जो है पता है कहाँ है? अंडर वाटर, पानी के नीचे। यू गेस्ड इट राइट। और अभी से अंडर वाटर वर्ल्ड को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है उसकी बात हो रही है। नेशनल डे रैली में अनाउंस किया गया था कि कमिंग डिकेड्स में पुलाव और पुलाव के आसपास के जितने एरियाज हैं, साउदर्न आइलैंड्स हैं, उनको उनके रिक्लेमेशन के थ्रू एक लार्जर वेस्टर्न आइलैंड का हिस्सा उनको बनाया जा सकता है, जो कि फ्यूचर इंडस्ट्रीज के लिए, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स और डिफेंस नीड्स के काफी काम आने वाला है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि इन आइलैंड्स के आसपास के वाटर्स जो है वो रिच मरीन बायोडायवर्सिटी और मैच्योर हैबिटेट्स का घर है। मैंने क्या कहा था, आधी दुनिया पानी के नीचे है। साइंटिस्ट्स और नेचर ग्रुप्स ने स्पेशली यहाँ के जो कोरल रीफ्स हैं और जो सेंसिटिव मरीन हैबिटेट्स हैं उनको लेकर काफी कंसर्न रेज किया है। इनमें कुछ कोरल रीफ्स ना वो अराउंड 8,000 साल पुराने, तो आप इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, नो नेवर। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि डेवलपमेंट से पहले टेक्निकल स्टडीज, साइट इन्वेस्टिगेशंस, सर्वेज, इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल स्टडीज जो है वो किए जाएंगे, ताकि बायोडायवर्सिटी और सराउंडिंग वाटर्स जो है उन पर पॉसिबल इम्पैक्ट को प्रॉपरली समझा जा सके। एविंग कुछ भी नहीं शुरू होगा, स्टेक होल्डर्स को भी एंगेज किया जाएगा। तो जितने भी लोग इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं ना, मरीन लाइफ एंड मरीन लाइफ को बचाना है एंड सी लाइफ एंड कोरल्स एंड ऑल दैट, आप जरा निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि हमारी सरकार जो भी करती है थोक बचा के करती है, चाहे पानी के ऊपर चाहे पानी के नीचे। सोचिए सिंगापुर जैसी कॉम्पैक्ट सिटी में हम ऊपर नए स्पेसेस तो क्रिएट करने की प्लानिंग कर रहे हैं और नीचे कोरल्स जो है वो जो आपस में बातें कर रहे होंगे कि बस प्लानिंग में हमको भी इंक्लूड कर लेना यार। बिल्कुल करेंगे, और आपके आसपास आपको बिना हार्म किए प्लान करेंगे, आप भी खुश, सब खुश। देखो डेवलपमेंट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट, लेकिन नेचर और डेवलपमेंट साथ साथ हो तो बैलेंस बनता है, और इसी को बैलेंस कहते हैं, उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिलहाल अंडर वाटर प्लानिंग को हम एक्सपर्ट्स के पास और उनके लिए छोड़ देते हैं। वेंसडे की प्लेलिस्ट को हम सरफेस पर लेकर के आते हैं, ये हमारा काम है, हम कर लें।
2: खुश मैं इतना क्यों, तुझको तवज्जो में क्यों, जाने क्या हुआ मुझे तेरे प्यार में, चमकू जैसे जुगनू।
1: एक्सपर्ट्स को हैंडल करने दो, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: बाइकी डन है मम्मा।
2: जूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: सीख ले।
1: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
2: गाना चाहिए, आप बोलो हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151893 पर। मस्ती वॉइस, आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुद्धा के साथ।
1: हाय सिंगापुर, एक बात बताइए, घर से शुरू हुआ आपका छोटा सा काम, घर से बाहर निकलने को बेताब है, कुल बुला रहा है, और इसके लिए क्या आप तैयार हैं? आई मीन आर यू रेडी अपनी पहचान बनाने के लिए? मे बी आप ब्यूटीफुल क्लोथ्स क्यूरेट करते हो, आप होममेड फूड बहुत अच्छा बनाते हो, स्नैक्स अच्छा बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट आइटम्स, डेकोर, फेस्टिव प्रोडक्ट्स, बहुत लोगों में ऐसा है जो आप बहुत अच्छा करते हैं, पर प्रॉब्लम लोग जानते नहीं है, लोग आपको नहीं जानते, आपके काम को नहीं जानते, आप बहुत अच्छा बनाते हैं पर पता नहीं है किसी को। तो इस फेस्टिव सीजन ना सिर्फ अपने फ्रेंड्स और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के भरोसे मत बैठिए, उनको मत दिखाइए, सिंगापुर को दिखाइए। और कैसे? मैं हूं ना, तभी तो आई हूँ। माउंट बेटन CCAICC प्रेजेंट्स द फेस्टिव बाजार 2026 ऑन द संडे 27th ऑफ सितंबर। कंफ्यूज मत होना, इट्स 27th सितंबर। सुबह 10 से लेके शाम के 6 बजे तक माउंट बेटन CC मल्टीपर्पज हॉल में। अब अगर आप कोई होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर है, स्मॉल बिजनेस ओनर है, या ऑलरेडी आपका एक एस्टैब्लिश बिजनेस है, आप उसको रन करते हैं, किसी के लिए भी, आप भी आइए, अपना स्टॉल लगाइए और अपने प्रोडक्ट्स को ना नए कस्टमर्स तक जरूर पहुंचाइए। वन थिंग यू शुड नोट, स्टॉल बुकिंग भी काफी एक्सेसिबल रखी गई है। स्टैंडर्ड टेबल रेट जो है दे आर $80 और प्रीमियम जो है दे आर फॉर $100। बट नोट वन थिंग, GST इज एक्सक्लूडेड, मतलब प्लस GST। स्टॉल रिजर्व करने के लिए आपको कॉन्टेक्ट करना है, नंबर नोट करें 8330-2518 पर। और सिंगापुर, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। वाई एंटरप्रेन्योर स्टॉल्स लगाएंगे तो हमें उन्हें ऐसे थोड़ी छोड़ना है, हमको उनका मोराल हाई करना है। जो बिजनेस करने बैठे हैं, अगर आप पहुंचेंगे नहीं तो उनकी हौसला अफजाई कौन करेगा, राइट? तो जो लगाएंगे वो आपको दिखाएंगे और आप देखने वहां जाएंगे, तभी तो मजे आएंगे। बाय गॉड, ये तो ड्राइविंग हो गई। तो फैमिली और फ्रेंड्स को साथ में लीजिए, फेस्टिव बाजार को एक्सप्लोर करिए। अपेरल्स, फैशन, फूड, स्नैक्स, होम डेकोर, गिफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, लाइफस्टाइल, फेस्टिव प्रोडक्ट्स, बहुत कुछ है, इंक्लूडिंग लाइव परफॉर्मेंसेस बाय द रेजिडेंट्स, बाय द किड्स, उनके लिए बाउंसी कैसल, जॉय राइड्स, लकी ड्रॉ प्राइजेस, देयर्स अ प्लेंटी ऑफ फेस्टिव फन भाई। तो द मंत्रा इज वेरी सिंपल हियर, आप भी आइए और अगर आपका अपना बिजनेस है तो आइए, लगाइए और बहुतों को लेकर के आइए। द फेस्टिव बाजार इज ऑन 27th ऑफ सितंबर, माउंट बेटन CC मल्टीपर्पज हॉल में। डेट नोट कर लीजिए।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय एवरीबॉडी, शो के दूसरे आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट की शुरुआत हम एक ऐसे एंटरटेनमेंट से करेंगे जो आपके शहर में आ रहा है आपको एंटरटेन करने के लिए। यू नो व्हाट सिंगापुर, कभी कभी ना हमें बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि हम सामने वाले का दिमाग पढ़ सकते हैं। बॉस ने मीटिंग में बस एक लुक लिया, लुक दिया, समझ आ गया कुछ तो गड़बड़ है। पार्टनर ने कहा नथिंग, आई एम फाइन, और आपको तुरंत पता है नो नो नो, नथिंग इज डेफिनेटली नॉट फाइन, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ये जो हम एवरीडे लाइफ में गेस्ट वर्क पे काम करते हैं ना, इसका एक नेक्स्ट लेवल वर्जन है, और वो नेक्स्ट लेवल वर्जन इज कमिंग टू सिंगापुर। सुहानी शाह, मेंटलिस्ट, माइंड रीडर, और वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड नेम्स इन मेंटलिज्म, इज ब्रिंगिंग स्पेलबाउंड लाइफ टू सिंगापुर। जी, ये नाम ही कितना स्पेलबाउंडिंग है ना, स्पेलबाउंड। एक इंग्लिश होस्टेड मेंटलिज्म एक्सपीरियंस है जहां पे माइंड रीडिंग, साइकोलॉजिकल इल्यूजन्स, सीमिंगली इम्पॉसिबल एक्सपीरियंसेस जो है वो सब अनफोल्ड हो जाएंगे एक ही जगह, एंड दैट्स ऑन द स्टेज। मतलब आप ऑडियंस में हैं जरूर, लेकिन कब वो आपका दिमाग पढ़ लें, आपको शो का पार्ट बना लें, आपको पता भी नहीं, और ये कहना बहुत मुश्किल है। तो आप जो भी सोच रहे हो, बहुत सोच समझ के सोचना। अच्छा, वेयर इज दिस हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग ऑन 20th सितंबर, इट्स 20th सितंबर, संडे है, तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। द शो इज स्पेल बाउंड, शाम 6 बजे, क्रेटा आयर पीपल्स थिएटर में, एंड टिकट्स जो है वो SISTIC पर अवेलेबल है। कहाँ पे? सिस्टिक पर, SISTIC पर द टिकट्स आर अवेलेबल। एक फ्रेंडली वार्निंग है, शो देखते वक्त ना पार्टनर के साथ अगर आप जा रहे हैं तो अपने सारे सीक्रेट्स ना पहले सॉर्ट कर लेना। मेंटलिज्म शो में रिस्क हो सकता है, तो क्यों रिस्क ले, है ना? कुछ छुपाओगे तो छुपेगा नहीं, कुछ नहीं बताओगे तो पता लग जाएगा। तो भैया पार्टनर को या तो सब बता देना या तो मत ले जाना, और अगर आपका पार्टनर आपको यहाँ नहीं लेके जा रहा है और छुप छाप जा रहा है, मतलब कुछ छुपा रहा है।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: जस्ट बिफोर दिस म्यूजिकल ब्रेक हम बात कर रहे थे माइंड रीडिंग की, है ना। बॉलीवुड ने कहा है कि माइंड बाद में रीड करना, पहले ये फिगर आउट करो कि कौन है असली हैवान। हैवान बोलते वक्त मेरे पास शैतान के गाने क्यों आ जाते हैं। एनीवे, अक्षय कुमार और सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म है ना हैवान, उसका ट्रेलर आ गया है। माय गॉड, द ट्रेलर इज वेरी इंटेंस, बिल्कुल अपने फर्स्ट लुक की तरह। और दोनों के बीच एक जो एक प्रॉपर फेस ऑफ है ना, वो सेट हो रहा है इस ट्रेलर में। डायरेक्टर है प्रियदर्शन। स्टोरी बेसिकली एक बहुत ही इंटेंस हंटर वर्सेस हंटेड की है। कैट एंड माउस गेम चल रहा है, उसी के अराउंड है। सैफ इज विजुअली इम्पेयर्ड, उसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अक्षय एक अवतार जो लेकर के आए हैं, काफी डार्क एंड इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल नजर आ रहा है। अक्षय और सैफ को एक साथ देखना इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री का एक अपना नॉस्टैल्जिया फैक्टर है। इस बार इक्वेशन जो है वो दोस्ती और कॉमेडी वाली तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। बहुत ही डेंजरस टेरिटरी में दोनों घूम रहे हैं इस वक्त। कास्ट में बोमन ईरानी, श्रेया पिलगांवकर, सियामी खेशी, दी इंस्पेक्टर, राजपाल यादव, शारिब हाशमी सब हैं। एंड दिस इज गोइंग टू रिलीज ऑन 11th of September 2026 सिनेमा हॉल्स में। ट्रेलर देखकर एक बात तो क्लियर है, फिल्म का नाम हैवान है, तो नेचुरली सवाल भी वही है कि हैवान एक्चुअली है कौन, वो जो आपको दिख रहा है या वो जो नहीं दिख रहा है। अगर कोई हैवान बना तो क्यों बना, अक्षय या सैफ, सैफ या अक्षय, या कहानी में कोई और ट्विस्ट है जो हमें नहीं पता। ट्विस्ट तो डेफिनेटली होगा, देखो ये तो डन है, प्रियदर्शन की पिक्चर है, ट्विस्ट तो है ही है। पर अगर आपको एग्जैक्ट आंसर्स चाहिए तो खुद जाकर देखना, पर प्लीज पिक्चर की क्लिप को इंस्टाग्राम के वीडियोस में मत डालना, है ना। बहुत स्पॉइल करते हो यार आप लोग, सीरियसली।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय, वेलकम बैक। सिंगापुर में इंडियन हाउसहोल्ड की शॉपिंग लिस्ट ना सिर्फ एक खासियत रखती है, उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है। घर से निकलते हैं सिर्फ अगरबत्ती लेने के लिए या माचिस की डिब्बी लेने के लिए, और रास्ते में याद आता है कि भाई साहब मसाले भी लेने थे और चक्कियां भी खत्म हो गई हैं, चाय पत्ती भी नहीं है, किचन में एक नया कुकर भी नहीं है, चाय बनाएंगे किसमें, पैन की हैंडल टूट गई है। ओ माई गॉड, हैंडल से याद आया कि राखी के दिन भैया आने वाले हैं, तो भैया उनके लिए भी तो हमें कुछ खाना बनाना है, चाय के पैन में चाय बनाएंगे तो सर्विंग के लिए नमकीन, ओ माई गॉड। और सबसे बड़ी बात, राखी तो ली नहीं थी। जो भैया जी आ रहे हैं जिनके लिए मिठाइयां नमकीन ला रहे हो, चाय पिलाओगे तो राखी भी तो बांधोगे। खैर देखो, ये इंडियन हाउस होल्ड की बात होती है। सो लिटिल इंडिया के वन कैंपबेल लेन पर एक है ज्योति स्टोर एंड फ्लावर शॉप, है ना। ये वो जगह है जहाँ पे इंडियन घरों के बहुत सारी नीड की चीजें एक ही छत के नीचे मिल जाती है। जब लिस्ट ग्रो करे तो ऐसी ही चीजें आपकी नजर में रहनी चाहिए। दिस इज वन कैंपबेल लेन पर ज्योति स्टोर एंड फ्लावर शॉप। यस, फ्लावर्स, प्रेयर एसेंशियल, किचन आइटम्स, स्पाइसेस, ट्रेडिशनल फूड इंग्रेडिएंट्स, टी, कॉफी, कॉस्मेटिक, आयुर्वेद एंड राखीज ऑफ कोर्स, क्योंकि राखी सीजन है भाई। ज्योति स्टोर्स पे आपको वो सब मिलेगा जो आपकी लिस्ट में भी नहीं है, क्योंकि आपने लिखा नहीं, क्योंकि आपको याद नहीं था। वो देख के याद आता है ना, कई बार प्रैक्टिकल ज्यादा जरूरी होता है, तो जो जो आपको देख के याद आए वो लेने के बाद लिख लेना, ताकि अगली बार भूलो नहीं। सो दिस इज दिस वन स्टॉप शॉप। आपको पता है बहुत पुरानी है, इट्स नॉट अ न्यू नेम, कोई आजकल की दुकान नहीं है ये। दिस इज 1960s से सिंगापुर की इंडियन कम्युनिटी के साथ जो है इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है। और सिंगापुर में अगर आपको एक ऐसी जगह मिल जाए जहां पे आपके दिल के तार जुड़ जाए, तो खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, ऐसे गाते गाते पहुंच जाना ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप। ठीक है, तो जाइए राखी के साथ भैया के लिए चाय बनाने के लिए चाय का पैन, सर्व करने के लिए टी सेट, नमकीन रखने के लिए क्रॉकरी, और क्रॉकरी में रखने के लिए नमकीन, साथ में काजू कतली, एवरीथिंग वो है ना।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: ये तो राइमिंग हो गई बड़ी सुहानी. एनीवे, कहावत ये है कि दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में. पता नहीं इमरान हाशमी ने बचपन में कहावत को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था या बड़े होने के बाद सुनिए तो अब लगता है कि पूरी पूरी इम्प्लीमेंट कर लें अपने ऊपर, क्योंकि जनाब का दोनों हाथ घी में है और सर कढ़ाई में. आवारापन टू है भाई, एक हाथ में उनके आवारापन टू है, दूसरे हाथ में एक और फिल्म आ गई है, दैट इज गन मास्टर G9. आवारापन का आवारापन तो अभी खत्म ही नहीं हुआ है, आवारापन टू अभी भी और लोगों को आवारा करे जा रही है और अभी और लोगों को आवारा बनाने पर निकल पड़े हैं. एक्चुअली गन मास्टर G9 का पहला ग्लिम्स आउट हो चुका है और इस बार ना इमरान रोमांस के साथ साथ फुल ऑन एक्शन मोड में. भैया इतना रोमांस अगर इमरान कराएंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा. खैर फिल्म में वो ईश्वर एक बहुत ही ऑर्डिनरी डेयरी फार्म ओनर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो कि अपने प्यार को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी बेहतर जा सकता है. तो बेसिकली प्यार है, प्रोटेक्शन है और इमरान है. हाय पर तो गाने बहुत अच्छे होंगे. पिक्चर में काफी मसाला है. एंड इफ यू रिमेम्बर एक बहुत ही वायरल सीन हुआ था अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जहाँ पे वो जेनेलिया के पीछे पीछे आगे पीछे चल रहे हैं. दिस इज द फिल्म जहाँ पे जेनेलिया है. जेनेलिया डिसूजा और अपार शक्ति खुराना भी आपको बहुत ही की रोल्स में दिखाई देंगे. डायरेक्टेड बाय आदित्य दत्त, नॉट धर, आदित्य दत्त की फिल्म है ये. और म्यूजिक आवर वेरी ओन एंड फेवरेट हिमेश रेशमिया का. तो इमरान हिमेश और आदित्य का कॉम्बिनेशन क्या डिकोड करना चाहते हो भाई. अब ये फिल्म आ रही है 27 नवंबर 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी. तो इमरान हाशमी के फैंस के लिए सिचुएशन बहुत सिंपल है, एक तरफ आवारापन है, एक तरफ गन मास्टर है. और हम जैसे ऑडियंस हमारे लिए भी दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में, एक के बाद अच्छी पिक्चर आ रहा है, हम सब संभाल लेंगे. अब आंडो आंडो आंडो आंडो This is me, Mugda. फिलहाल गाने बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं भाई. ये शो का सेकंड आवर यहाँ पे खत्म हो रहा है. मुलाकात होगी शो के थर्ड एंड द लास्ट आवर में. टिल देन, क्या टिल देन, गाने सुनो.
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक सिंगापुर। मैं हूँ मुग्धा और आप सुन रहे हैं मस्ती हैंगआउट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। देखो, जिंदगी को ऑनलाइन शॉपिंग ने बड़ा आसान बना दिया। अच्छा हाँ, आप शो के थर्ड एंड द लास्ट आवर में है, लेट मी रिमाइंड यू अगेन। लाइफ बहुत ईजी हो गई है ना ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से। आप कुछ भी घर बैठे बड़े आराम से खरीद लेते हो। फोटो देखी, जूम इन जूम आउट किया, प्राइस वाइज देखा, थोड़ा इधर उधर रिव्यू भी देख लिया अगर है तो, और उसके बाद ऑर्डर किया एंड डन। बट समथिंग सम चीजें आई मीन कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो स्क्रीन पर देखने के लिए नहीं बनी होती है, दे वोंट डू जस्टिस ऑन स्क्रीन। जैसे कि गणेश चतुर्थी के लिए अगर आप इस साल गणपति बाबा को अपने घर लाने वाले हैं तो एक बार ज्योति स्टोर एंड फ्लावर शॉप के 21 कफ रोड लोकेशन पर खुद जाके जरूर देखेगा। यू नीड टू रिमेम्बर वन थिंग, अगर आप गणपति ज्योति स्टोर से ले रहे हैं तो इसका एड्रेस दूसरा है, उनके फ्लावर शॉप पे मत जाइएगा। दिस इज 21 कफ रोड लोकेशन पर है ये। वहां पे यू नीड टू गो एंड सी द आइडल्स। देखो वहां बप्पा की इतनी खूबसूरत मूर्तियां हैं, इतनी ब्यूटीफुल है, अलग अलग साइजेस एंड कलर्स एंड उनके वस्त्र, उनके पगड़ी, ज्वेलरी, सो फाइन डिटेलिंग अलग अलग पोजेस में कि आप सोच भी नहीं पाओगे। आपको लगेगा थैंक गॉड मैं यहाँ पे आया है, नाउ आई डिड द शॉपिंग उनको आमने सामने देखकर। सच बता रही हूँ, इतनी ब्यूटीफुल है। देखो वैसे भी पापा का हर रूप बहुत सुंदर होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर आपका मन साफ है, श्रद्धा है, तो आप जिस भी रूप में पापा को घर लाएंगे आपको ब्लेसिंग्स तो पूरी मिलनी है पापा की, है ना। लेकिन इन मूर्तियों को सजाने और बनाने वाले जो कारीगर है ना, उनकी मेहनत भी तो देखो आप। और वो कब जस्टिस मिलेगा उनकी मेहनत को, वो जस्टिफाई कब होगी, उनको सामने जाकर देखोगे किसी पगड़ी पर कितनी डिटेलिंग है, किसी ने हाथ में कुछ धारण किया है, ज्वेलरी है, वस्त्र है, कलर कॉम्बिनेशन, उनकी आंखें, उनके बैठने की मुद्राएं। बाय गॉड, मैंने तो देखा और मैं देखती रह गई। मैं और अंतरा गए थे एंड वी वर लाइक मेस्मराइज्ड। मन तो क्या सब ले आए, बट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज अ फैमिली तो हम तो एक एक गणपति लाएंगे। बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू गो एंड सी देयर, ऑनलाइन वोंट डू द जस्टिस। तो अगर आप जा रहे हैं तो ऑनलाइन बप्पा चूज मत करो, हाथों का हुनर देखो, थोड़ा समय लगाओ और कहाँ जाओ वो भी नोट कर लो। यू हैव टू गो टू 21 कफ रोड, वहां जाइए, थोड़ा वक्त लीजिए, बप्पा के अलग अलग रूपों को निहारिए, मन से देखिए, पसंद करिए और फिर देखिए कि कौन से बप्पा को देख कर आपका दिल कहता है इस बार तो आप ही हमारे घर चलेंगे, ऐसा मन से आवाज आएगी देखना। अब ये आइडल्स अलग अलग साइज के हैं, 6 इंच, 8 इंच, 14 इंच के, और इसके लिए आपको जाना है गणपति आइडल्स के लिए 21 कफ रोड पर, ठीक है।

पुरानी एड्रेस पे मत पहुंच जाना. दिस इज द एड्रेस जो मैंने आपको बताया है और इसका एड्रेस है, नया वाला नोट करिए, 21 कफ रोड्स, ओनली फॉर गणपति. ठीक है, स्टे ट्यून्ड.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: माइकी डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Hey, welcome back. मन बन गया ना जाने का? I knew that. अच्छा चलो फिलहाल तो सिंगापुर जरा वापस आते हैं। ट्रैफिक जाम में फंस करके अगर आप बैठे हो कार में, आपको नींद आ जाए ट्रैफिक जाम में, समझ में आता है। लेकिन अगर आप खुद सो गए और आपकी वजह से ट्रैफिक जाम लग गया, तो ये टैलेंट बहुत रेयर है, पर ये टैलेंट मिला है इंडिया में। केरला के कोटायम से एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जहां पे इवनिंग रश आवर के बीच में एक ड्राइवर ने अपनी कार में बिजी रोड पे एक्टिव लेन में कार रोकी और स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक ऐसी नींद पकड़ी कि बस सो गया। वो गाड़ी रुकी, ट्रैफिक रुक गया, जिनाब की नींद नहीं रुकी, क्योंकि नींद रुकी तो ट्रैफिक खुल जाता ना, तो न्यूज कैसे बनती। यस, सब रुक गए पर नींद नहीं रुकी। लोकल्स ना पहले जेन्युइनली बहुत वरीड हुए कि कहीं ड्राइवर कोई मतलब कोई मेडिकल इमरजेंसी में तो नहीं फंस गया है। लोग कार के आसपास से देख रहे थे उसको, जमा हो गए, गाड़ी वाड़ी हिलाई, शेक किया, शेकी शेकी गाने भी बजा दिए, सब कुछ, लेकिन जगाने की बहुत कोशिश करी। लेकिन साहब पता नहीं कौन सी नींद थी, डू नॉट डिस्टर्ब मोड अपने माइंड में लगा के सो गया था, वो उठ ही नहीं रहा था। फिर पुलिस पहुंची, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कार के अंदर ना अल्कोहल बॉटल्स मिले और सोडा की बॉटल्स मिली, तो बेसिकली ड्राइवर वॉज ड्रंक एंड स्लेप्ट। जी हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि एंड वॉज नॉट दैट इंटरेस्टिंग, मतलब अब आप समझ रहे हैं कि ड्रंक एंड ड्राइव, ड्रंक एंड स्लीप दोनों ही बहुत हानिकारक है, तो ये सब कुछ ही सेहत के लिए हानिकारक है। ड्राइवर को कस्टडी में ले लिया गया, उसको ड्रिंक एंड ड्राइविंग और ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए रजिस्टर हो गया केस। नींद कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, सिंगापुर आपको सही जगह पे नींद आनी चाहिए, तो ये ब्लेसिंग है। बिजी रोड के बीच में आ जाएगी तो पुलिस के लिए ब्लेसिंग बन जाएगा, बिकॉज उनको मिल जाएगा, उनका काम मिल जाएगा पुलिस को, मैं तो ये कह रही हूँ।

0: आसमानों का
1: एंड ड्रिंक एंड ड्राइव तो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नींद आ रही है गाड़ी को किनारे खड़ा करो या घर जाओ या कहीं ऐसी जगह पे सो जाओ जहाँ पे आप किसी को और को परेशान मत करो समझ में आ रहे
2: हैं You're tuned into Radio Masti 24/7 live keeping you connected anywhere anytime the desi way

0: cause I'm a new kind of.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste, bhaiyon aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: देखो ड्राइवर्स आर ऑन सम अदर लेवल एंड सम अदर मूड, पता नहीं कुछ तो ही हो रहा है। आपको पता है बैंकॉक में एक टैक्सी ड्राइवर ने कस्टमर सर्विस को लिटरली एक अलग ही लेवल पर लेकर गया। वो एक ड्राइवर जो था वो कस्टमर सर्विस को ऐसा ले गया कि वो सो गया बीच रास्ते में, एंड अनदर वन इज और अलग ही है वो। उनकी टैक्सी में अगर आप बैठते ना तो बैठिए और डेस्टिनेशन बताने के बाद आसपास देखना जरूर। टूथब्रश चाहिए? दिला देंगे। सॉक्स? दिला देंगे। वो भी बेबी पाउडर, मिरर, वाटर, कॉफी। अब भाई साहब क्या है, कुछ ऐसा है जो उनकी कार उनकी टैक्सी में नहीं, सब है। बैंकॉक में जनाब ने मीटर के साथ में मिनी मार्ट पूरा बना दिया, मिंटर डाउन एंड मार्ट अप। स्टोरी का बेस्ट पार्ट पता है? पैसे नहीं लेते वो। राइट, दिस इज फ्री फॉर द पैसेंजर। देखा, लगा था झटका। सो पता ये लगा कि ड्राइवर ये जो इनिशिएटिव है वो करीब 10 साल से वो चला रहे हैं इस काम को। पैसेंजर्स को ये जेस्चर बहुत पसंद आता है, आना भी चाहिए, एंड वॉलंटियरली वो अपना टिप छोड़ देते हैं उनको जो भी अच्छा लगता है, और ड्राइवर उसी पैसे से अपनी सप्लाईज को दोबारा स्टॉक करते हैं। यानी एक पैसेंजर की जो अप्रिसिएशन है अगले पैसेंजर के वो काम आ जाती है। एंड शायद इसीलिए ये जो वीडियो है काफी वायरल हो रहा है, क्योंकि कभी कभी ना बिजनेस आइडिया से ज्यादा काइंडनेस का आइडिया रह जाता है। एंड दिस इज ऑफ कोर्स अ वेरी गुड बिजनेस आइडिया कि जो पैसेंजर अप्रिसिएशन के तौर पे वहां रख देता है उठाए हुए सामान का, उसी पैसे से वो अपने बिजनेस को, उनके लिए तो बिजनेस तो नहीं है, खैर चैरिटी है उनके लिए तो, बट स्टिल पैसा तो चाहिए होता है ना, तो मतलब उसमें बर्डन नहीं आता कहीं पर भी अलग से, है ना। वाओ, सच अ गुड डीड यार। वैसे अगर सिंगापुर के टैक्सीज में ये आइडिया आ गया तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, फोन चार्जर सबसे पहले रख लेना, प्लीज प्लीज रख लेना। मेरे जैसी तो हर बार चार्जर घर पे भूल जाती है और फिर ऑफिस पहुंचने तक हर एक सेकंड बैटरी जो है वो सेव करती रहती है।

मैं हूँ मुग्धा, मेरी आदत आपको ना लगे तो बेहतर है, पर अगर आप ऐसी कोई टैक्सी आइडिया सिंगापुर में लगाने वाले हैं तो प्लीज कीप अ चार्ज पॉइंट सारे वोट के लिए और तो क्या।

आजकल की लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त. ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: और बस आज का हैंगआउट का टाइम वो टाइम जब मुझको कहना पड़ेगा बाय बाय बाय बाय। पर जाने से पहले एक सवाल, नहीं नहीं कोई केबीसी का सवाल नहीं, कोई आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा इसके लिए। कभी मुझे सुनते हुए, रेडियो सुनते हुए, हम में से किसी को भी सुनते हुए, समर को सुनते हुए ऐसा लगा कि हाय, हाँ ठीक है समझ गई समर को सुन के तो कुछ और ही लग जाता है लोगों को। खैर, तो रेडियो सुनते वक्त कभी लगा कि मैं कर सकता हूँ, पॉडकास्ट सुनते वक्त कभी सोचा कि मेरे पास भी बहुत स्टोरीज है यार, मैं अच्छे से सुना सकता हूँ पॉडकास्ट में। कभी किसी का इंटरव्यू सुन के लगा कि आई हैव बेटर क्वेश्चंस देन दिस पर्सन, मैं ज्यादा अच्छा इंटरव्यू ले सकता हूँ। ऑफ कोर्स बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कर सकते हैं। स्टेज देखकर लगा कि यार ये माइक अगर मुझे मिल जाता तो मैं तो समा बांध देता, क्या ऑडियंस हैंडल करता है ना। कोई स्क्रिप्ट सुन के लगा यार इस अच्छी स्क्रिप्ट तो मैं लिख लेता है, क्या है। तो अब सिर्फ सोचो मत, लगो मत, करो, क्योंकि करने से होता है। मस्ती मीडिया एकेडमी में आप ब्रॉडकास्टिंग, पॉडकास्टिंग, मीडिया प्रेजेंटेशन सबको प्रैक्टिकली एक्सप्लोर कर सकते हो। पता है वेदर यू वांट टू बिकम एन आरजे, अ पॉडकास्ट होस्ट, अ प्रेजेंटर, कंटेंट क्रिएटर, इवेंट होस्ट, व्हाट एवर, सिंपली अपने कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग को भी अगर आप ठीक करना चाहते हो, वी आर हियर, आ जाओ सिखा देंगे। एकेडमी में ना ट्रेनिंग एक्टिव ब्रॉडकास्टर्स के साथ होती है, रियल वर्किंग स्टूडियो एनवायरमेंट

को मिलता है, एक्सपोजर मिलता है, यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस तक तीन लर्निंग लेवल्स आपको मिलते हैं, वॉइस स्पीच, ऑडियंस एंगेजमेंट, स्टोरी टेलिंग से लेकर के इंटरव्यूइंग, कंटेंट प्लानिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कहीं तक भी पहुंचने का, लाइव होस्टिंग सिमुलेशंस, हैंड्स ऑन ब्रॉडकास्टिंग, सब कुछ मिलता है। और एक चीज मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी कि सेशन जो है ना स्कूल वर्क पर्सनल कमिटमेंट्स को बहुत ध्यान में रख के बनाए गए, बिकॉज दे आर वेरी फ्लेक्सिबल स्केड्यूल्स, यू नो आप उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हो। हर सक्सेसफुली कंप्लीटेड लेवल के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलता है और सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को मस्ती मीडिया पॉडकास्ट इंटरव्यू एडिशनल प्रोजेक्ट्स में अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है, मौका मिलेगा, आ जाओ सिखा देंगे। तो अगली बार रेडियो सुनते हुए सिर्फ ये मत सोचना कि राजे कितना अच्छा बोल रहे ना, हो सकता है नेक्स्ट टाइम माइक के इधर आप हो, है ना। डिटेल्स और एप्लीकेशन के लिए आपको एक छोटा सा प्यारा सा अपना इंट्रो जो लिखकर भेजना है info@radiomasti.com.sg या विजिट कर सकते हैं रेडियो मस्ती की वेबसाइट पर मस्ती मीडिया अकेडमी सिंगापुर, राइट। और इसी थॉट के साथ मुग्धा को दीजिए इजाजत, इट्स बीन लॉन्ग, ये मेरा अपना गाना था जो मैंने बड़े बड़े बनाया। मैं हूँ मुग्धा, आज की मस्ती हैंगआउट के साथ आपको कह रही हूँ बाय बाय, थैंक यू सिंगापुर, अपना ख्याल रखिए, म्यूजिक को अपने पास रखिए, आवाज को कभी अंडर एस्टिमेट मत करिए अपनी, एवरी वॉइस इज ब्यूटिफुल, यू जस्ट नीड टू पॉलिश इट अ लिटिल, और नहीं हो रही तो इधर आ जाइए सिखा देंगे। ताला बाय बाय, फिर मिलेंगे रेडियो मस्ती पर अगले शो में।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
3: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
4: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
5: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। प्रेजेंटिंग द एनकोर ऑफ योर फेवरेट शोज, अनदर डे अनदर टाइम फॉर योर लिसनिंग प्लेजर ओनली, बिकॉज सुपर हिट्स डिजर्व अ रिपीट। चेक आउट द एनकोर शो स्केड्यूल ऑन आवर ऐप मेन्यू।
6: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

हम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जल्ले वालों को धक्का लगता है, चाहे कोई भी मैदान हो जब घूमता है बल्ला तो बस शक्ल लगता है। कोई रोक के तो सही ना, काम उसका तमाम हो जाए, या तो काम है सकर के नाम हो जाए, या तो नाम है सकर के काम हो जाए।

0: ऐसे चलते हैं जैसे होते गुलेल हम।
1: I do what I like, I do what I do, कर ले कुछ तू क्यों देखे मेरा मुंह, जब करते हैं aim तो करते ना miss, check my fizz, check my fizz.

0: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
1: Purush nahi. Mahapurush hai. Mahapurush.
0: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: अर्जुन आएंगे
0: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: नचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Welcome to your chill zone. Musty Music Cafe. Only music, only musty.
1: आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स.

0: नमस्कार सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: कुछ पुरानी धुने, कुछ भूली बिसरी यादें,
2: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
1: कोई आवाज, कोई साज, सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
3: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the devotional hour on Radio Masti 24/7. Masti pe bhakti, subah 6 baje se.
4: Mere Karan Arjun aayenge.
5: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. Par haan to sirf super hit back to back gaane aayenge. मस्ती म्यूजिक कैफे।
6: अला रे अला सिंबा अला।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: आएंगे
1: न करण अर्जुन आएंगे न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे
2: पुरुष ही नहीं महापुरुष है महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
3: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
4: आई लव यू रसना।
3: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Musty 24/7 Live.

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
1: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: का पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर
1: आ जाओ बिल्कुल मूड चेंज करने का वक्त शुरू होता है अब 5 बज गए हैं देख लो घड़ी में 5 बज गए हैं कैन यू बिलीव इट आई कांट बिलीव इट हाउ कैन यू बिलीव इट बट यू विल हैव टू बिलीव इट बिकॉज आई एम आस्किंग यू टू बिलीव इट रेडियो मस्ती 24/7 पर गुड इवनिंग नमस्ते व्हाट्सअप क्या चल रहा है दोस्तों ये जिंदगी इतनी स्लो नहीं काफी फास्ट सी चल रही है ये बहुत यूनिक से एक जंक्शन पे हम एटलीस्ट मैं तो आके खड़ी हुई हूँ बाय द वे मिड वीक ब्लूज हो रहे हैं वेकेशन से आने के बाद बहुत ज्यादा हो रहे हैं और ये जो रोज मुझे मैं जो अपने आप ही टॉर्चर कर रही हूँ पोस्ट कर करके और देख रही हूँ कि यार क्या मजे कर रही थी मैं इस टाइम पे ऐसा कर रही थी ओ माय गॉड बट वेल शो करने अब मैं बिल्कुल यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ बट वेल देन ये सारी चीजें तो चलती रही जब मैं वियर्ड चीज इसलिए ये कह रही थी पूरी की पूरी बात कि यूजुअली लोग कहते हैं कि वेकेशन से आने के बाद जो है जब आप काम पे आते हो और वापस से जो नो ज्वाइन करते हो तो वक्त बहुत धीरे धीरे निकलता है मैं कह रही हूँ कि आज सुबह जब मैंने अपनी आंखें खोली और उसके बाद मैं ऑफिस पहुंची और मैंने देखा कि टाइम हो रहा है अरे क्या क्या ही इतना ज्यादा अकेला 10:30 हो रहे हैं कोई नहीं बहुत मस्त है बस मैंने नीचे देखा ही था और मैंने कीबोर्ड पे टाइप करना शुरू ही किया था कुछ जब मैंने आंखें ऊपर उठाई तो बज रहे थे 5 गाना शुरू हो गया था मैं तो मारी जावा मैंने कहा है ये क्या हुआ ये लिटरली पलक झपकते वाला सिचुएशन हो गया सो वेल कुछ ऐसा ही है एक तो ये ऊपर से वेकेशन का गम जहां पे यू नो मेरी बॉडी तो यहाँ पे वापस आ चुकी है बट हम अंतरा की आत्मा वही कहीं कोसामुई में घूमती हुई नजर आ रही होगी जो कोई भी अब वहां पर होगा सो वेल वो अलग वहां पे चल रहा है उसके ऊपर से जो है जब आप के पास काम आता है तो वो चारों तरफ से वो कहते हैं कि भाई हम तो वेट ही कर रहे थे तुम्हारा सो आप समझ रहे हो मेरी पोजिशन और कर रहा है अंग अंग मेरा दर्द क्योंकि वापस से जब हमने जिम जाना शुरू किया है तो या मेरे ट्रेनर ने कहा है कि मैम आपने जो किया है मैंने कोई सवाल नहीं किया अब मैं जो करूंगा उस पे कोई सवाल और संदेह नहीं उठाया जाएगा सो आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे साथ क्या क्या कुछ नहीं हो रहा है आओ मूड चेंज करें पानी दर रंग चेंज करें अब नहीं वो फ्राइडे पे विकी डॉलर से ये वाला गाना आ रहा है आप जरा म्यूजिकल ब्रेक लेके वापस आए फिर अपनी खबरों का सिलसिला हम भी शुरू करते हैं ऑन रेडियो मस्ती 24/7 शुरू हो चुका है मिडवीक ब्लूज गुड इवनिंग

0: Welcome the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi with Jyoti Store and Flower Shop at 21 Cuff Road. Choose from a vast variety of decorative and eco-friendly Ganpati idols, rangoli powder with stencils, thalis, rudraksha and all other puja requirements as the festivities begin. You can also order your Ganesh idol online. Just log on to www.jyoti.com.sg. For more info, call 633-87008. Jyoti Stores and Flower Shop, a must visit this festive season.
1: Some stories are easy to tell, par kuch kahaniyan dil ke andar hi reh jaati hain. एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है. ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते. हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती. बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से. टेक अ ब्रेक, लाफ अ लिटल एंड वाइब अ लॉट, बिकॉज वीकेंड इज ऑलमोस्ट हियर. मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
2: चलिए छुट्टियों पे इस बार केरलम जाया जाए. यात्रा अभी तो छुट्टी से आई है और फिर से छुट्टी, क्या चल रहा है तेरी जिंदगी में? कितना अच्छा होता ना कि मैं बोल रही होती कि अभी तो मैं आई हूँ और मैं फिर वापस जा रही हूँ. मतलब अलग ही वाइब आ जाती. आप पूछते कि ये कौन सी वाली यात्रा के साथ तुम हमारा रूबरू जो है करा रही हो, इससे तो हम पहले कभी मिले नहीं. वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7. 5 बजकर हो चुके हैं 20 मिनट. मिडवीक ब्लूज है इस सिर्फ शो का नाम. हमारे यहाँ पे आज के डेट में कोई भी ब्लूज नहीं होते, क्योंकि जब हम मिलते हैं तो हम ऐसी कोई बात ही नहीं करते जिससे ब्लूज आए जाए. हम बस कहते हैं कि चलो आओ मूड चेंज करें. सो एक ऐसा नाम जो हमने स्कूल के मैप से लेकर हॉलिडे प्लान्स तक हमेशा सुना हुआ है, केरला. एंड इट्स ब्यूटीफुल, ओके, बहुत ही खूबसूरत जगह है. और जो जो वहां पे गया हुआ है सब इस बात से बिल्कुल अग्री करते हैं. केरला इज नाउ ऑफिशियली केरलम. बाय द वे, हैप्पी ओनम एवरीवन. सो वेल, इसी वजह से मैंने सोचा कि इसी खबर के साथ जो है शुरू किया जाए. यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है उन्होंने केरला का जो ऑल्टरेशन ऑफ नेम एक्ट है उनको नोटिफाई कर दिया है, और विच इज 25 अगस्त, विच वॉज येस्टरडे, केरलम स्टेट का ऑफिशियल नाम हो चुका है. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है इंडिया की, उन्होंने गया अपना हामी भरी earlier this month after the bill was passed by both Lok Sabha and Rajya Sabha as well. अब आप सोच रहे होंगे कि केरला से केरलम क्यों? क्योंकि मैंने भी यही सोचा था. एक्चुअली मलयालम में स्टेट को ट्रेडिशनली केरलम ही कहा जाता है. सो केरला लेजिस्लेटिव असेंबली ने 2024 में यूनानिमसली रेजोल्यूशन जो है पास करके सेंटर से रिक्वेस्ट की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्टेट का नाम उसके मलयालम नाम के अकॉर्डिंग केरलम जो है किया जाए. सो टेक्निकली सिर्फ एंड में एक एम एड हुआ है, बट उसे एक लेटर के पीछे लैंग्वेज एंड हिस्ट्री और रीजनल आइडेंटिटी का डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. तो अगली बार जब आप ट्रैवल प्लान बनाए तो थोड़ा सा अपडेट कर ले, केरलम चलते हैं, है ना? नाम थोड़ा नया लगेगा, बट बैकवाटर बीचेस, वो ग्रीनरी और वो खाना, एंड एब्सोल्युटली गॉर्जियस. थैंकफुली वो सब बिल्कुल वही का वही है ना? वापस से खुद ही कोई है ना, अपने आप पे टॉर्चर कर रही हूँ. खुद ही मन कर रहा है कि चलते हैं यार. मैं सिर्फ एक बार गई हूँ, बट मेरी यादें इतनी ताजा है, बिकॉज आई रियली रियली लव्ड माय टाइम ओवर देयर. नेचुरल और नेचर का ब्यूटी अगर देखना है अलोंग विद पानी एंड पहाड़, ओहो हो, क्या ही बात कर रहे हैं हम. गुड इवनिंग.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: Aamir Khan wondered.
2: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
1: Salman Khan wanted answers.
3: Kaise kiya ye?
1: R. Madhavan said.
4: Awesome.
5: You're very good, yaar. Very well done.
1: And Boman Irani?
6: I say this with great respect. This is actually, it's blown my mind.
1: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
7: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
1: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism, and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
8: How do you know these things? Stop reading my mind.
9: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
10: माइकी डन है मम्मा।
11: जूटी
12: लास्ट टाइम मैं उठा था ना।
11: मैं उठता।
9: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
13: ट्रैफिक अपडेट
9: 5:32 by the studio clock, Radio Masti 24/7 में अंतर आपके साथ। एंड बाय द वे, Radio Masti 24/7, तो हम जब ये रेडियो की बात करते हैं तो उसका नाम है बट। अगर आप ऐप स्टोर पे जाकर देखोगे तो हमारे ऐप का नाम बदल चुका है, एंड आई वांट यू टू टेक नोट ऑफ दैट। नाउ वी आर मस्ती मीडिया 24/7, क्योंकि इतना सब कुछ आ गया है। ओवर द इयर्स वी हैव एडेड सो मच, राइट? मस्ती AVI है, हमारे पॉडकास्ट है, Everything has evolved and changed, तो हमें लगा कि ये भी थोड़ा थोड़ा तो मतलब कुछ कुछ होते रहना चाहिए ना जिंदगी में, ठीक है? चलो फिलहाल कुछ कुछ जो ट्रैफिक में हो रहा है उसको पता करते हैं। व्हीकल ब्रेकडाउन इस वक्त आपको मिलेगा ऑन PIE टूवर्ड्स चांगी आफ्टर थॉमसन रोड। एक इंसिडेंट हुआ है ऑन KPE टूवर्ड्स TPE at TPESLE exit. और मिलेगा हैवी ट्रैफिक इस वक्त आपको इन KPE टनल, अगर आप जा रहे टूवर्ड्स TPE बिटवीन PIE ECP। सो वेल, ये था ट्रैफिक अपडेट इस घंटे का। एंड यहाँ पे कोई तबू नहीं है, खैरिये सड़क पे खड़े होकर कि रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक। 90s वाला वर्जन कल चलाएंगे, आज ये हेलीकॉप्टर ईला वाले वर्जन से काम चला लेते हैं। ऑन रेडियो मस्ती 24/7, गुड इवनिंग।

0: so sexy.
1: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज.
2: क्या कहता है बाहर का तापमान? रेडियो मस्ती 24/7. मैं अनुराग के साथ यहाँ पे चल रहा है मिडवीक ब्लूज. भाई तापमान कुछ ऐसा कहता है. वेदर अपडेट लेकर आई है आपकी लड़की. मेट्रोलॉजिकल सर्विस सिंगापुर कह रहे हैं कि भाई मोस्ट नाइट्स इन द सेकेंड हाफ जो है अगले महीने के मतलब आने वाले 14 दिनों की ये बता रहे हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन वार्म एंड ह्यूमिड विद टेम्परेचर्स अबव 27 डिग्रीज. एंड डे टाइम में भी ज्यादा रिलीफ नहीं है. कहा जा रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर्स जो है एक्सपेक्टेड टू होवर अराउंड 33 टू 34 डिग्रीज ऑन मोस्ट डेज, और कुछ दिन 35 तक भी पहुंच सकता है. वैसे तो हमें पता ही है, वी हैव काइंड ऑफ आवर बॉडी हैज आल्सो काइंड ऑफ गॉटन यूज्ड टू ऑल ऑफ दिस. इंटरेस्टिंगली कि ये वार्म माहौल जो है वो चलता हुआ जा रहा है. एंड गर्मी के साथ अम्ब्रेला, ये है पर्टिकुलरली बहुत ही एकदम सिंगापुर टाइप का वेदर. सो शॉर्ट ड्यूरेशन के थंडरी शावर्स लेट मॉर्निंग्स एंड आफ्टरनून्स जो है उसमें कुछ दिन में एक्सपेक्टेड है. ओवरऑल दो रेनफॉल ऑन द सेकेंड हाफ कहा जा रहा है इस फोरकास्ट में. इट्स supposed to remain below average across most of Singapore. And yeah, ek aur cheez authorities aajkal bahut hi carefully monitor kar rahe hain, dry conditions ke karan Sumatra mein jo hotspots and smoke dunes hai usko observe kar rahe hain acche se. Agar fires intensify hue aur winds Singapore ki taraf rahe तो हेजी कंडीशंस और भी ज्यादा पॉसिबल है. एनीए जो है वो जो इशू कर रहे हैं डेली हेज एडवाइजरीज इफ द 24 RPSI एंटर्स द अनहेल्दी रेंज और नॉट. सो या सिंपल है, वाटर बॉटल, अम्ब्रेला, सनस्क्रीन एंड ह्यूमिडिटी के साथ थोड़ा इमोशनल एक्सेप्टेंस. आई थिंक दैट्स अ गुड कॉम्बो एंड वी आर गुड एट दैट, यू नो दैट राइट. हम यूज टू हो चुके हैं, हमें पता है. गुड इवनिंग.

0: मोनिका,
1: वो आ गया। देखो देखो वो आ गया।

0: Welcome the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi with Jyoti Store and Flower Shop at 21 Cuff Road. Choose from a vast variety of decorative and eco-friendly Ganpati idols, rangoli powder with stencils, thalis, rudraksha and all other puja requirements as the festivities begin. You can also order your Ganesh idol online. Just log on to www.jyoti.com.sg. For more info, call 633-87008. Jyoti Stores and Flower Shop, a must visit this festive season.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
4: एक बात तो जो मैं कहना चाहती हूँ वो है ये कि जिस बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो चीज आपको मैं चाहती हूँ कि यू योरसेल्फ हैव टू गो देयर टू विटनेस द मैजिक, विटनेस द सरियल फीलिंग जो मैंने फील किया। मैं चाहती हूँ आप भी वो चीज फील करिए बिकॉज वो फीलिंग बहुत खूबसूरत है। रेडियो मस्ती 24/7 में अंतरा आपके साथ यहाँ पर चल रहा है मिड वीक ब्लूज। भाई जब बप्पा साथ में होते हैं ना तो फिर कोई तो ब्लूज हमें हाथ भी नहीं लगा सकता है। आई नो दैट वी ऑल बिलीव इन दैट राइट। भाई मैं पहुंची हमारे लिटिल इंडिया में ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के 21 कफ रोड। सो वन कैंबल लेन पे तो है ही है बट आई एम टॉकिंग अबाउट 21 कफ रोड। व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दैट? वहां पर बप्पा की जो मूर्तियां हैं वो पूरा वहां पे उन्होंने सेटअप कर रखा है एंड यू विल हैव टू गो देयर फिजिकली टू बिलीव व्हाट माय आईज, व्हाट ब्यूटी माय आईज सॉ। एक तो द रेंज एंड अ वैरायटी ऑफ बप्पा की मूर्तियां जो कि ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप को, भैया मैं तो कह रही हूं कि बहुत ना कोटि कोटि बढ़ा हुआ। It was just insane. एक तो आपको वो फीलिंग भी आती है ना कि चारों तरफ बप्पा बप्पा, डिफरेंट डिफरेंट साइज के बप्पा, मतलब छोटे छोटे बप्पा से लेकर बहुत बड़े बड़े बप्पा ऑल्सो। सो दैट वेराइटी इज देयर, द साइज का वेराइटी इज देयर एंड द काम एंड द फिनिशिंग इन ईच वन ऑफ दोज। देयर वॉज दिस बप्पा, सो डिफरेंट डिफरेंट सीटिंग स्टाइल्स में भी बप्पा वहां पे नजर आए उनकी मूर्तियां एंड यू नो ज्वेलरी में क्या काम किया है यार उन्होंने, मतलब इतना खूबसूरत, इतने खूबसूरत लग रहे, इतने प्यारे लग रहे। And the variety of clothes Papa

है, हर किसी का किसी ना किसी टाइम पर जो है आना जाना लगा रहता है. एंड ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप, मतलब वी ऑल नो, नॉट ओनली फॉर दिस, फॉर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स वी गो ओवर देयर, बट आई रियली वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस दिस मैजिक एंड दिस सरियल फीलिंग जहां पे ये बप्पा 21 कफ रोड पे उधर सब उन्होंने रखे हुए हैं. ओ माय गॉड, आई कैन पिक्चराइज एंड विजुअलाइज इट राइट नाउ व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट इट. इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंगली ब्यूटीफुल, अमेजिंग अमेजिंग. वेल, इसी बात पे अजय अतुल का वो गाना हो जाए, आई थिंक यस, स्पिरिट एकदम अच्छी हो जाती है. लेट्स गो.

0: मेरा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: पहुंच चुके हैं 6 बजे के उस पर. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते. रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ यहाँ पर मिडवीक ब्लूज, यानी कि हो चुका है हम लोग वो हफ्ते के बीचों बीच कोजी वाली जगह पर, जहां से फ्राइडे बहुत करीब लगता है और थर्सडे तो हो जाता है प्री फ्राइडे ऑलरेडी, है ना. बट वेल, उसी के साथ साथ सपना जी ने कहा कि बेटा महीना भी खत्म होने को आया. मैंने कहा बात तो ये बिल्कुल सही कही आपने, बट देन दिस हफ्ता इज क्वाइट नाइस. फ्राइडे को ऐसे ही हमारा मूड इतना अच्छा होता है, बट फ्राइडे को त्योहार भी है, रक्षाबंधन है, एंड रक्षाबंधन आएगा, फिर उसके बाद गणपति बप्पा आएंगे, उसके बाद जो है ये वो वाला टाइम पीरियड शुरू हो गया कि बैक टू बैक काफी सारी चीजें जो होती हुई रहे. जन्माष्टमी भी आने वाली है, सो देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग एंड या व्हिच इज अ गुड थिंग. सो वेल, सिंगापुर की खबरों पे वापस आते हुए, अभी अभी जो है हाल ही में हमने सिंगापुर का नेशनल डे मनाया, नेशनल डे रैली के जो है अनाउंसमेंट, हाइलाइट्स, इन सभी के बारे में बात की. जब भी नेशनल डे सिंगापुर के बारे में बात होती है, एनडीपी नेशनल डे परेड के बारे में बात होती है. अब भाई 2026 में 2027 की बात करें तो ये भी फीलिंग आने लगती है कि भाई ये साल भी क्या खत्म होने को आया है. वेल, देखा जाए तो ऑलमोस्ट. So, कहा जा रहा है एनडीपी 2027 जो है इट इज टू बी हेल्ड एट पादांग, जो है वापस जा रहा है पादांग में, एज सिंगापुर जो है कमेमोरेट्स 60 इयर्स ऑफ नेशनल सर्विस. डिफेंस मिनिस्टर हमारे सिंगापुर के जो है उन्होंने कहा दैट द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी विल ट्राई एंड प्लान समथिंग स्पेशल फॉर ऑल द सिंगापुरियंस, स्पेशली हु हैव सर्व्ड टू कीप सिंगापुर सेफ. देर इज नॉट अ मोमेंट एंड देर इज नेवर नेवर, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि कभी सिंगापुर को किसी चीज को जो है रिस्पेक्ट देनी हो या फिर उसको सेलिब्रेट करना हो, उसमें कभी भी ये पीछे रहे हो. आई थिंक वी आर ऑलवेज इन नंबर वन एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज वी रियली पुट आर नॉट ओनली प्रैक्टिकल थॉट्स बट आर इमोशनल इंटेलिजेंट थॉट्स एज वेल, सो दैट इट कनेक्ट्स विद everybody who is staying in Singapore. So, well, ये एक और अपडेट आपके नाम. बिल्कुल पर्दा हटा दिया गया है, 2027 का एनडीपी होगा कहां, पादांग में. इट इज गोइंग बैक ओवर देयर. सो वेल, पर्दा पर्दा हाँ पर्दा. आई नो आज मैं थोड़े से पेपी गानों के पीछे एकदम पड़ गई हूँ, लेकिन मूड भी तो पेपअप कर सकते हैं ना, यही करते हैं वो काम. गुड इवनिंग.

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
2: बाइकी दोने मामा।
3: ड्यूटी।
4: लास्ट टाइम मैं उठा था ना।
3: मैं उठता।
5: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
6: आमिर खान wondered.
7: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
6: सलमान खान wanted answers.
8: कैसे किया ये?
6: R. Madhavan said.
9: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
6: And Boman Irani?
10: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
6: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
11: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
6: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonder Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
12: How do you know these things? Stop reading my mind.
13: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
14: दरअसल इस रक्षाबंधन फ्लेवर हर कहीं पर बिकॉज फ्राइडे को जो है राखी आने वाली है लेकिन रक्षाबंधन फ्लेवर इन द इंडस्ट्री ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्सी आने वाली है. मैं बताती हूँ आपको रेडियो मस्ती 24/7 अंतर आपके साथ यहाँ पर मिडवीक ब्लूज. भाई कृति सैनन जो है कॉन्ट्रोवर्सी के बीचों बीच फिलहाल फंसी हुई है. तो कुछ ऐसा हुआ कि वी ऑल नो दैट जब भी त्योहार आने वाले होते हैं तो उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स के एड्स वगैरह भी आते हैं. याद है मतलब आई एम टेकिंग यू बैक टू द 90s बट वेल ठीक है चलो अभी की बात कर लेते हैं बिकॉज कल करेंगे 90s वाले रक्षाबंधन वाली बातें कल कर लेंगे शो पे मस्ती 90s मिक्स टेप पे. सो कृति सैनन इस एड में फीचर हुई जहां पर वो अपने भाई को राखी बांध रही है एंड देन अपने डॉगी को जो है उसको राखी बांध रही है. प्रॉब्लम ये हो गई जनता को कि अपने भाई को राखी कैसे. सुब्रा जो नहीं जानता सुब्रालेट इज काइंड ऑफ अ टॉप ठीक है ब्लाउज जैसे भी. सो बेसिकली आप इंटरनेट पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा. तो कि ये पहनकर अपने भाई के सामने बैठकर कैसे राखी बांधती उन्होंने, ये तो हमारी संस्कार नहीं है. तो ऐसे बात करके बात बढ़ती गई, बात हाथ से बाहर निकल गई. इसमें ऑफकोर्स जब किसी और की बात चल रही हो और अपनी साड़ी बीच में घुसेड़नी हो तो कंगना रनौत कहाँ पीछे रहती है, वो भी अलग ही है हमारी, है ना. नहीं नहीं हम तो बोलेंगे. उन्होंने भी काफी कुछ कह दिया कि हमारे उसके खिलाफ है दिस एंड दैट, ऐसे यू नो हमें इन सब चीजों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए. सो बेसिकली अभी पीपल आर डिवाइडेड, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर स्पीकिंग इन सपोर्ट ऑफ कृति सैनन एज वेल. क्या हो गया भाई, कब तक आप कपड़ों को ही देखोगे, देयर इज नो इमोशन इन्वॉल्व्ड, कब तक ये सारी चीजें, इन सब चीजों से हमें आगे उभर जाना चाहिए. वी आर इन 2026, हम पहले से जब यू नो सिर्फ कहने के लिए आगे बढ़े हैं बट सोच से अभी भी हम लोग उधर ही खड़े हुए हैं जहां पर बहुत पहले खड़े थे. सो ये सारी चीजें चलते चलते चलते जो है अब कुछ ऐसा आ गया है कि कृति सैनन ने भी वापस से जो है स्टेटमेंट दिया कि आई एम नॉट रिग्रेटिंग एनी पार्ट ऑफ इट, कि मैं माफी क्यों मांगू जब मैंने कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं. एंड आई कंप्लीटली सपोर्ट एंड आई कंप्लीटली स्टैंड बाय माई सेल्फ एंड माई डिसीजन ऑफ वट एवर हैज बीन शोन ऑन द स्क्रीन, इट इज नथिंग बैड. ये सारी चीजें हो गई लेकिन इन सबके बीच में अब लेटेस्ट खबर ये आई है दिस एड हैज बीन टेकन डाउन ऑलरेडी. जी हाँ उसको हटा दिया गया है हर जगह से बिकॉज इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में जो है ये इस तरह से मतलब कभी कभी होता है ना. इनफैक्ट मुझे लगता है कि सेलिब्रिटीज भी सोचते होंगे कि ये बैठे बैठे क्या हो गया, मतलब कोई बात ही नहीं थी और ये बात ऐसे ही बिगड़ गई. लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड. आई एम श्योर कृति सानन मस्ट बी थिंकिंग द सेम. बट देन वही है कि आगे बढ़ते रहना है तो यस, जिंदगी में सुकून चाहिए तो कई बार हमें लेट गो करना पड़ता है कि यार छोड़ो ना, तुम लोगों को खुशी मिल रही है, जस्ट लेट इट गो, है ना. सानू की करके, सानू की तो मैं ही बोल रही हूँ. फिलहाल हम पढ़ते हैं आगे. ये तो कॉन्ट्रोवर्सी हो गई तो हमने आपको अपडेट दे दिया. सानू की हम गाने सुनेंगे, है ना. गुड इवनिंग.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
2: Welcome the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi with Jyoti Store and Flower Shop at 21 Cuff Road. Choose from a vast variety of decorative and eco-friendly Ganpati idols, rangoli powder with stencils, thalis, rudraksha and all other puja requirements as the festivities begin. You can also order your Ganesh idol online. Just log on to www.jyoti.com.sg. For more info, call 633-87008. Jyoti Stores and Flower Shop, a must visit this festive season.
3: Baju. Traffic update.
4: To get the real feel of Bappa, मेरे कहने पर एक बार 21 Cuff Road पर चले जाइए, ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप, एंड जस्ट गो एंड एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ, लाइक, इट इज बप्पा एंड बप्पा ऑल अराउंड यू इन डिफरेंट शेप्स, साइजेस, एंड सो सो वेरी ब्यूटिफुल. आप आके मेरे को थैंक यू बोलोगे 10,000 बार कि चलो तुमने इतना इंसिस्ट किया अंतरा, इसलिए हम एक बार जाकर जो है देख के आए. सच्ची में एक बार जरूर जाके देखिए. 6:33 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में. आइए आपको बताया जाए ट्रैफिक अपडेट इस घंटे क्या कहता है. हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा ऑन PIE towards us at TPE exit. हैवी ट्रैफिक की खबर होने वाली towards Duas at Clementi Avenue 6 exit, aur ek accident ki khabar hai on PIE towards Changi after KPE. So well, ye tha is ghante ka traffic update. Coming up is a very happy go lucky kind of a gana from a brilliant movie, Ranbir Kapoor ke saath isme Priyanka Chopra nazar aayi thi, and the way he used to call Priyanka Chopra used to call his Buffy. Yeah, it's a beautiful one.

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: So how rich is too rich? आइए बात करें. वी हैव टू डिस्कस रेडियो मस्ती 24/7 में अंतर आपके साथ. बाय द वे हमारा ऐप का नाम अब हो चुका है मस्ती मीडिया 24/7. इफ यू हैव नॉट नोटिस्ड तो आई वांट यू टू टेक अ नोट ऑफ इट. पता होना चाहिए ना, हमें पता है तो आपको भी पता होना चाहिए. सो वेल, मेरे वीक ब्लूज चल रहा है और ये सुनकर तो मुझे अपनी जिंदगी के ब्लूज थोड़े से याद ही आ गए हैं. सो मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग भैया जो हमारे हैं विद हिज वाइफ प्रिसिलिया चैन, दे हैव बॉट दिस कैसल. घर भी नहीं, कैसल जो है आयरलैंड में इन्होंने खरीदा है. एंड इट्स जस्ट नॉट एनी कासल, ओके, इट्स स्ट्रैंकली कासल इन काउंटी वाटरफोर्ड. एक गॉथिक रिवाइवल प्रॉपर्टी है बिल्ट अराउंड लाइक 1830s में, सिटिंग ऑन अप्रोक्सीमेटली 440 एकर्स ऑफ लैंड अलोंग द रिवर ब्लैक वाटर. नाउ ये जो कासल इटसेल्फ इज अराउंड 16,000 स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. एंड रिपोर्ट्स कहती हैं दैट द एस्टेट वुड बी वर्थ समवेयर बिटवीन लाइक 20 million, 30 million पाउंड, ऐसा कुछ कह रहे हैं. एग्जैक्ट परचेस प्राइस अभी तक ऐसा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया है. लेकिन अब आता है मेरा फेवरेट वाला डिटेल जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ. सो द प्रॉपर्टी वॉज अपेरेंटली डिजाइंड ऑन सच अ लैविश स्केल दैट अकॉर्डिंग टू द बुक, ठीक है, द हाउसेज ऑफ आयरलैंड वॉकिंग ब्रिस्कली फ्रॉम द किचन to the dining room takes about 4.5 minutes. जी हाँ, मतलब आई थिंक ये हम लाइक हम देसी इसके लिए तो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते हम अपने ऊपर. नहीं, इमेजिन करिए डिनर टेबल पे बैठे और याद आ रही और अचार तो किचन में रह गया. बस उसके बाद मैं तो यही सोचूंगी कि घर घर भी स्टेप्स पूरे हो जाएंगे. ठीक है, अचार लेने जाओ और आपका फिटबिट बोले कि कंग्रेचुलेशन यू हैव कंप्लीटेड योर इवनिंग वॉक, 4.5 मिनट में जाकर लेके आओगे. एंड दिस एक्चुअली अ प्रैक्टिकल रीजन बिहाइंड द आयरलैंड कनेक्शन. Zuckerberg की कंपनी मेटा हैज इट्स इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स डबलिन में एंड द फैमिली इज एक्सपेक्टेड टू यूज दिस प्रॉपर्टी व्हेन दे विजिट आयरलैंड. सो दे विल रिपोर्टेडली कंटिन्यू लिविंग प्राइमरली यूनाइटेड स्टेट्स में. जो प्रीवियस ओनर्स थे दे हैड स्टेड दिस एस्टेट फॉर अराउंड लाइक 25 साल एंड एक्सटेंसिवली दे रिस्टोर्ड इट. एंड Zuckerberg के स्पोक्स पर्सन कहते हैं फैमिली इज लुकिंग फॉरवर्ड टू कंटिन्यूइंग टू टेक केयर ऑफ दिस हिस्टोरिक प्रॉपर्टी. बट सीरियसली 4.5 मिनट किचन से डाइनिंग रूम, ये बैठ नहीं रहा है हमारे हमारे मैथ के हिसाब से तो ना बैठ रहा है. हमारे घर में तो फ्रिज तक जाते जाते भी हम सोचते हैं कि क्या मैं सच में इतनी भूख लगी है. बट वेल, आप कहोगे कि ये इतना सारा पैसा इतने रिच है ना. एक्चुअली ये मेरा दूसरा साइड कह रहा है कि अंतरा उनको उठ के जाने की जरूरत नहीं है, इनके लिए कोई 4.5 मिनट चल के आएगा, इनको सर्व करेगा. रिच दे यार, आप देख रहे हो हालत कैसी है मेरी कि मैं उतना सोच ही नहीं पा रही हूं. मैं खुद ही सोच रही हूँ अचार लेने तो खुद ही जाना पड़ेगा. वेल, आओ कभी हवेली पे भाई, प्यार होना चाहिए, पैसे से ज्यादा प्यार होना चाहिए. प्यार दिल में जगह होनी चाहिए, दिल में, है ना. गुड इवनिंग.

0: हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.

0: Welcome the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi with Jyoti Store and Flower Shop at 21 Cuff Road. Choose from a vast variety of decorative and eco-friendly Ganpati idols, Rangoli powder with stencils, Thalis, Rudraksh and all other puja requirements as the festivities begin. You can also order your Ganesh idol online. Just log on to www.jyoti.com.sg. For more info, call 633-87008. Jyoti Stores and Flower Shop, a must visit this festive season.
1: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Our mood change kare.
2: जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता हुआ जा रहा है वैसे वैसे जो है दृश्यम के आई थिंक और भी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स जो है सामने आते हुए जा रहे हैं। रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ मिडवीक ब्लूज आप सुन रहे हैं। भाई काफी हम बातें कर रहे हैं दृश्यम के बारे में। थ्री द थर्ड पार्ट इज ऑल स्केड्यूल्ड बाई 2nd October 2026 को। वी वर टॉकिंग अबाउट दिस राइट, बट apparently Drishyam 3 jo hai may have pulled off its very first twist before even Ajay Devgan jo hai even he returns as Vijay Salgaonkar. Ji haan, now Hindi version कहा जा रहा है जो अजय देवगन पे पिक्चराइज किया जाएगा एज यूजुअल विल नॉट सिंपली फॉलो मोहनलाल जी की मलयालम फिल्म से सीन फॉर सीन जो कि पिछली वाली दो जो है वो काफी काफी हद तक सिमिलर है। सो डायरेक्टर अभिषेक पाठक जो है उन्होंने कहा है बोथ वर्जन्स बिगिन फ्रॉम द पॉइंट वेयर दृश्यम 2 एंडेड ओके बट इनके नैरेटिव्स एंड स्क्रीन प्लेस जो है विल मूव वेरी डिफरेंटली। व्हाइल द मलयालम वर्जन लीन्स मोर टुवर्ड्स एक इमोशनल फैमिली ड्रामा हिंदी अडेप्टेशन जो हम बना रहे हैं इस बार इज बींग डेवेलप्ड एज फैमिली थ्रिलर। दैट मीन्स वॉचिंग द मलयालम दृश्यम 3 मे नॉट नेसेसरली स्पॉइल हर मेजर सरप्राइज वेटिंग इन द हिंदी वर्जन विच इज अ वेरी गुड थिंग। Now it makes me even more curious to watch this one. So changes have been made to the story and the treatment of Hindi for Hindi audience ke liye while keeping the larger Drishyam universe intact, and that is very very important. Shreya Saran jo hai has also indicated that Hindi Drishyam 3 is quite different from the Malayalam counterpart. So knowing what George Kutty is does may not tell you exactly what Vijay Salgaonkar has planned. Basically, do filmo ke baad they are teaching the audience ki bhai Vijay Salgaonkar par aap koi bharosa kar hi nahi sakte. So basically, Drishyam jo hai has found another way to keep everyone guessing. Well, we just have to wait and watch now, hai na? All right, we shall. Radio Masti 24/7 par filhal ke liye. Oh, the Jalebi baby is waiting for us. Let's go.

0: का पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज.
1: वेलकम बैक. 7 बजे के उस पार बिल्कुल पहुंच चुके हैं ऑन रेडियो मस्ती 24/7. मैं अंतरा यहां पर आपके साथ. मिडवीक ब्लूज चल रहा है और जरा एक मिनट, आसपास पेन है, अगर फोन है तो उसका नोट्स खोल के एक एक चीज लिख लीजिए ना. SSA21 लिखा. S फॉर सिंगापुर, वापस से एक और बार S फॉर सिंगापुर, A फॉर अंतरा, 21 लिख लिया. वेरी गुड. अब ये है प्रोमो कोड, इसको याद रखना ठीक है. बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू बी स्पेल बाउंड सुहानी शाह के साथ, देन आपको ये प्रोमो कोड याद रखना पड़ेगा. भाई यही बात कर रही हूं कि मैजिक होती कितने कमाल की चीज है. चाहे हम बचपन में मैजिक जाके जब देखते थे कि कैसे टोपी में से निकल आया कबूतर और ये सारी चीजें हुआ करती थी, बट हमारी क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट उसी लेवल पे रहती थी कि अरे मतलब ऐसा हुआ तो जोर जोर से ताली बजाया एंड एवरीथिंग. नाउ कट टू 2026. यस, इट हैज टू इवॉल्व. मैजिक ऑल्सो नीड्स टू इवॉल्व. एंड देयर इज दिस वन बंदी जिसको मिला हुआ है ऑस्कर्स ऑफ मैजिक के खिताब से उनको नवाजा गया है और कहा गया है कि भाई अगर मैजिक का नाम आज की डेट में कोई उसके साथ लिया जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मेंटलिस्ट हमारी सुहानी शाह का बिल्कुल लिया जाएगा. सो देयर इज दिस एक्सपीरियंस व्हिच इज गोइंग टू हैपन इन सिंगापुर लाइक नेवर बिफोर. गेट स्पेल बाउंड, यस दैट्स द शो का नाम व्हिच इज गोइंग टू हैपन लाइव इन सिंगापुर. रियल माइंड मैजिक एंड रियल कनेक्शन सुहानी शाह, दैट इज राइट. भाई 20 सितंबर को शाम को 6 बजे संडे का बहुत ही प्यारा प्यारा दिन है, क्रेटा एयर पीपल्स थिएटर में जो है सुहानी शाह आने वाली है एंड इट इज गोइंग टू बी जस्ट मैजिकली अमेजिंग. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड हर वीडियोस यू हैव टू गो. आई वो लाइक आज से नहीं कुछ टाइम से ही आई हैव बीन काइंड ऑफ फॉलोइंग हर एंड आई वाज लाइक भाई एक तो वो दिखती इतनी स्मार्ट सी है, कूल सी है, एक वाइब है उसकी एकदम फुल ऑन उसके साथ. एंड देन व्हेन शी डज ऑल दोस थिंग्स सो या इट्स जस्ट सो वेरी नाइस. सो सिस्टिक पे जाके इफ यू व्हेन यू बुक द टिकट इफ यू यूज द कोड SSA21. सो यस ऑफकोर्स आप रेडियो मस्ती के लिसनर हो यार. जिसके पास मस्ती मीडिया 24/7 का ऐप है वो लकी इंसान है क्योंकि ये कोड आप लोगों को बिल्कुल एक्सक्लूसिवली दिया जा रहा है to get the discounts. Other than that, if you want कि हमें कुछ जिता दो, कुछ तो contest वॉन्टेस्ट खेल लो, तो मैं हूं ना, है ना. तो मैं ये पूछ रही थी कि एक सिंपल सा सवाल मैं पूछ लेती हूँ ठीक है, और वो सिंपल से सवाल का सिंपल सा जवाब जो है वो आप दे देना, है ना, क्योंकि बहुत सारी बातें तो मैंने यहाँ पर साथ साथ में बात करते हुए देखी थी है. सवाल कुछ ऐसा है कि स्पेल बाउंड विद सुहानी शाह लाइफ इन सिंगापुर ठीक है कौन सी डेट को होने वाला है. है ना आसान है ना. कौन सी डेट को सुहानी शाह का स्पेल बाउंड शो लाइव इन सिंगापुर होने वाला है. फटाफट से 9151896 पर हमको लिखकर भेज दो एंड देन हम सब मिलकर गाएंगे इट्स मैजिक इट्स मैजिक. आई एम काइंड ऑफ लविंग दिस गाना. यही प्ले करते हैं व्हाट से रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. कब है सुहानी शाह का शो बताना सर. या दैट्स द क्वेश्चन.
2: आमिर खान वंडर्ड.
3: वाओ, लुक आई कुड हैव थॉट ऑफ एनीथिंग, दैट्स अमेजिंग.
2: सलमान खान वांटेड आंसर्स.
4: कैसे किया ये.
2: आर माधवन सेड
5: ऑसम, यू आर वेरी गुड यार, वेरी वेल डन.
2: एंड बमन ईरानी.
6: आई से दिस विद ग्रेट रिस्पेक्ट, दिस इज एक्चुअली इट्स ब्लोन माय माइंड.
2: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल.
7: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
2: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonder Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
8: How do you know these things? Stop reading my mind.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
2: भाई की डन है मम्मा।
3: ड्यूटी
4: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
5: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस।
6: अरे अरे अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा।
0: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 PM onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
7: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Our mood change kare.
1: Are you a Shah Rukh Khan fan? If yes, then you got to know about this. I got to know about it and I was like really amazed with this. Radio Masti 24/7, main Antra aapke saath. By the way, hamara app ka ab naam ho chuka hai Masti Media 24/7, kyunki hum bade ho gaye hain. Jab log bade hote hain aur jaise jaise hamari journeys aage badhti hui jaati hai, to we evolve with it. So evolve hoke ab naam ho chuka hai Masti Media 24/7. Just in case if you did not know, main itni baar bolungi ki aapko yaad ho jayega. Koi tension नहीं इस बात पे। कमिंग बैक टू शाहरुख खान, शाहरुख खान की एक बहुत ही रेयर अनरिलीज्ड फिल्म जो है एक हर फैन क्लब्स में ना एक फैन क्लब होता है जो बहुत ही रेयर चीजें जो है उसके बारे में डिस्कस करता है। एंड सडनली आई स्टम्बल्ड अक्रॉस दिस वन एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड इज इट। अहमाक करके इट्स वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द रेयरेस्ट फिल्म्स एसोसिएटेड विद शाहरुख खान का करियर। डायरेक्टेड बाय अक्लेम्ड फिल्म मेकर मनी कौल एंड ये जो मूवी है वॉज कंप्लीटेड बट नेवर received a official theatrical release, making it largely unknown to the mainstream ke audiences, okay? And that is why we don't know about it that much. Because it remained unreleased and only a very small number of cinema enthusiasts jo hai, and dedicated Shah Rukh Khan fans, jo hai, they are aware of this project. So over the years, Ahmaq naam ki ye jo movie hai, unreleased Shah Rukh Khan ki, has gained a mysterious reputation. It's often being discussed as a forgotten chapter in the superstar Shah Rukh Khan ki filmography and its rarity and public limited access jo hai. It continues to spark curiosity ki bhai, making it one of the most talked about unreleased films linked to Shah Rukh Khan ki ye kya hai? It's just too good. In fact, main unke comment section mein bhi pad rahi thi jahan pe ye post hua tha that actually it is not unreleased that way. It is a mini series and Doordarshan pe jo hai dikhaya gaya tha and it was commissioned by it. Yeah, well, I mean seriously and they showed a clip of Shah Rukh Khan at that point of time and initially jo hai hum log kehte hain ki hum log ne unko dusre TV shows wagera mein dekha hai but never heard of Ahmaq. Yeah, hai na, good piece of information. Gana dikh raha hai yahi wala, but this is the recreated version from the movie Hindi medium, but vibe wahi hai. So Gubir Paji is the best.

0: इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है।
1: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपर्ट इंडियंस, एनी टाइम एनीवेयर।
2: Aamir Khan wondered.
3: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
2: Salman Khan wanted answers.
4: कैसे किया ये?
2: R. Madhavan said.
5: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
2: And Boman Irani?
6: I say this with great respect. This is actually blown my mind.
2: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
7: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhan.
2: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! One Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
8: How do you know these things? Stop reading my mind.
2: Welcome the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi with Jyoti Store and Flower Shop at 21 Cuff Road. Choose from a vast variety of decorative and eco-friendly Ganpati idols, rangoli powder with stencils, thalis, rudraksh and all other puja requirements as the festivities begin. You can also order your Ganesh idol online. Just log on to www.jyoti.com.sg. For more info, call 633-87008. Jyoti Stores and Flower Shop, a must visit this festive season.
9: Baju.
10: Traffic update.
11: आइए ट्रैफिक का अपडेट दिया जाए। इस घंटे का 7:36 हो चुका है। स्टूडियो क्लॉक में ट्रैफिक अपडेट कुछ ऐसा है कि व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा इन एमसीई टनल टुवर्ड्स एवाईई बिफोर सेंट्रल बुलेवार्ड। एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन पीआईई टुवर्ड्स अचांगी आफ्टर बुक इतमार रोड, अवॉइड करें लेन्स 3 और 4। और मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन पीआईई टुवर्ड्स टुवास बिटवीन जुरोंग टाउन हॉल रोड एंड क्लेमेंटी। वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक का अपडेट। गाने का अपडेट कुछ है कि बेनी दयाल आ रहे हैं फ्रॉम द मूवी कॉकटेल एंड कह रहे हैं कि मिली तेरी यारी कुछ ऐसी जैसे दर्द सी। लेट्स गो।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: आईजी मैं बिल्कुल आईजी रेडियो मस्ती 24/7 पर. चलिए भाई यहाँ पर कुछ आपके फायदे की बात कर लेते हैं ना. जैसे ही अपना फायदा सुना तो एकदम कान खड़े हो जाते हैं ना. वेल दिस इज फायदा फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव बीन वर्किंग फ्रॉम होम. लाइक आपने कुछ खूबसूरत से बहुत सारी चीजें बनाई हो एंड यू हैव बीन यू नो व्हाट्सएप ग्रुप्स वेयर जो है उसके थ्रू आपने अपना बिजनेस कर रखा हो एंड ऑल दोज थिंग्स. आई थिंक आई हैव अ फैंटास्टिक आइडिया फॉर यू एंड इट इज for all those people who want to showcase their talent and wo bhi festive bazaar mein. Yes, Mountbatten CCIAEC jo hai la rahe hai festive bazaar 2026. It's a celebration of shopping, food and community, but you can be a part of it by being there and showcasing apna jo bhi aap wahan par showcase karna chahte ho. Wahan pe jo stalls hain theek hai wo aap apne काम के लिए या फिर अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे व्हाटएवर यू वांट टू प्रमोट ऑफ योरसेल्फ एंड यू आप जो है आप खुद में काफी करने की कोशिश कर रहे हो. आई थिंक दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू डू सो. जहां पे प्रीमियम टेबल आपको स्टॉल मिल रहा है $100 में, स्टैंडर्ड टेबल कॉस्ट जस्ट $80. And I know, and you also know for a fact, these prices are really, really good. Well, apart from this, it is going to be absolutely mind-blowing because it's going to be like bahut sare live performances hone wale hain. There's going to be bouncy castle for the kids, joy rides, lucky draw ke prizes, and bahut sare exciting activities which awaits. So, well, main to kahungi ki aapne pehle apne stall ka kaam dekh lena hai. Theek hai, stall ko book karne ke liye aapne karna hai inko contact 833-02-518. ये वो नंबर है जहां पे कॉल करके आप इनको बिल्कुल कह सकते हो, पूछ सकते हो. आई एम श्योर दैट यू मस्ट बी हैविंग अ लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस एज वेल कि स्टॉल बुकिंग से रिलेटेड और क्या क्या चीज आपको पता करनी है. आप बिल्कुल बिंदास उनसे पूछे. संडे 27th ऑफ सितंबर है ये फेस्टिव बाजार 2026, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक माउंटबेटन सीसी मल्टीपर्पज हॉल में. सो डोंट लेट दिस मौका गो आउट ऑफ योर हैंड. इफ यू थिंक दैट यू हैव समथिंग जहां पे आपने अपने लोगों के बीच में इस तरह से शोकेस करना है, गो ग्रैब दैट स्टॉल का अपॉर्चुनिटी राइट अवे. फेस्टिव बाजार 2026, आई थिंक इट्स द टाइम, एकदम फेस्टिव वाला.

0: take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
1: ये सब आपकी गलती है. आप इतना मेरा मन लगाए रखते हो और मैं इतना एंजॉय करने लगती हूँ कि मैं भूल ही जाती हूँ कि 8 बजे मेरा शो खत्म हो जाता है. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर जी हाँ, अंतरा आपके साथ थी. 5 बजे से अब बजने वाले हैं 8, तो मेरा तो हो गया है इस समय कि मैं अब जिम जाऊंगी और जी हाँ, इस दर्द भरे शरीर के साथ ही जिम जाऊंगी. आई थिंक दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट राइट, व्हेन यू अगेन यू नो आफ्टर योर वेकेशन और जब आप दबा के एकदम खा पी के वापस आए हो और उस टाइम पे आपको पता है कि बाद में जाके आपको ज्वाइन करना है, बट स्टिल यू फील लाइक हाँ हाँ देख लिया जाएगा. देख रही हूँ, रोज महसूस भी कर रही हूँ. द इनिशियल बिट इट ऑलवेज पेन्स बिकॉज योर मसल्स आर लाइक हेलो कहाँ थी तुम. सो वेल लेट मी गेट बैक टू दैट एंड यू हैव अ फैंटास्टिक इवनिंग अहेड. कल मुलाकात होगी मस्ती 90s मिक्स टेप में, ठीक 11 बजे शुरू हो जाएंगे. और कल मैं सोच रही हूँ कि एकदम रक्षाबंधन वाला फ्लेवर लेकर आया जाए, है ना. 90s की इतनी याद है मेरी इस त्योहार के साथ कि मजा आएगा. Let me think a little bit more about it. Till then, yeah, you always stay tuned to Masti Media 24/7. That's the app ka naam. If you have not noticed it, not noted, meri baat sun lo, note kar lo. Yaad rakhna. Bye-bye, take care, good night.

0: वो शख्स जिसको हंसते हुए घर पसंद थे, वो शख्स जिसको बोलते मंजर पसंद थे, वो शख्स जिसके साथ समय खुशगवार लगता था, वो शख्स जाने कितने दिलों का करार था। कैसे बताऊं तुमको वो किस बात में गुम है, वो कहां है, जाने कहां हुआ गुम है। नमस्कार, एक बार फिर कोई ऐसी दास्तान लेकर मैं हाजिर हो गया हूं जो जाने कहां गुम हो गई है। जो दास्तान अभी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचने को ही थी, उससे पहले ही खत्म हो गई है। और दास्तान का नाम है केके। ये बात कहते हुए आज मेरी आंखें नम हो जाती हैं कि मशहूर और बेहद दिल अजीज गायक केके हमारे बीच नहीं है। केके हर घर में अलमारी में बहुत संभाल कर रखी एक कैसेट और सीडी है जो सदा रहेंगी। केके हमारे मोबाइल लैपटॉप पर मौजूद डिजिटल लाइब्रेरी में है, मेमोरी में है। मोहम्मद रफी साहब को हम सभी ने रफी साहब बुलाया, किशोर कुमार को किशोरदा, पर केके से एक याराना सा रहा हम सबका, हम सबके यार केके। न साहब न दादा, बस केके, जो टीनेजर और कॉलेज में जाते बच्चों का दोस्त है, जिसके गाने ऐसे लगते हैं जैसे हमारे लिए लिखे गए हैं और गाए गए हैं। 90s के दौर में, 90 के दशक में जिनकी आवाज का ऐसा जादू चला कि वो आज तक उतरने का नाम नहीं लेता, वो खुमारी वो नशा आज तक दिल पर तारी है। कितने दिलों ने उसी आवाज में कहा, मैंने दिल से कहा, सच कह रहा है दीवाना, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, तू ही मेरी शब है, तू ही सुबह है। और फिर सोचता हूं वही आवाज गा रही होगी इस वक्त, छोड़ाए हम वो गलियां,
1: तेरे खुद को छुपाना तेरा

0: आते हैं दिल की वीरानियों को मिटा जाते हैं।
1: एक ब्रेक के बाद और भी बातें होंगी उनकी जिनकी आवाज बहुत करीब है और हमेशा हमारे दिल में समाई रहेगी। स्टे कनेक्टेड।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
2: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
5: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
6: कोई बहुत ही अनोखा, कोई बिरला ही म्यूजिक लवर होगा जिसकी प्लेलिस्ट में के नहीं होंगे। दोस्ती के पल हो, प्रेम का लम्हा हो या हार्ट ब्रेक का सदमा, के हर वक्त मौजूद थे, उन्हें बुलाया नहीं जा सकता, न बुलाया जा सकेगा। के का जन्म हुआ था दिल्ली की एक मलयाली फैमिली में। तारीख 23 अगस्त 1968, 23 अगस्त 1968 को जन्मे के का नाम रखा गया कृष्ण कुमार कुन्नत, जिनको हम के के नाम से पुकारते हैं, के नाम से जानते हैं। बचपन में उन्होंने सपना देखा डॉक्टर बनने का, इसलिए नहीं कि पढ़ने का बड़ा शौक था, ऐसी कोई एम्बिशन थी उनकी, ऐसा नहीं। डॉक्टर बनेंगे ये ड्रीम उन्होंने देखना शुरू किया उनके पड़ोस में रहने वाले एक अंकल से, जो एक डॉक्टर थे। डॉक्टर अंकल से वो बहुत इंस्पायर्ड थे, उनको लगता था कि उनके जैसा बनना है, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था, वो उन्हें अलग राह पर ले गई। घर में बड़ा म्यूजिकल माहौल था, लिहाजा राहें उन्हें वहां ले गई। के की मम्मी अक्सर घर में मलयाली गाने गाया करती थी, और उनके पिताजी उन्हें गाते हुए टेप पर रिकॉर्ड किया करते थे। के ने कभी सिंगिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, उन्हें तो बस बचपन से गाने सुनने का और साथ में गुनगुनाने का शौक था, तो वो भी गाते थे। शोले का महबूबा महबूबा गाना उनका फेवरेट था, घंटों गाते रहते थे। तो पापा मम्मी के दोस्तों सहेलियों के आगे परफॉर्म करते हुए के बड़े हो रहे थे। के सेकंड क्लास में थे जब उन्होंने पहली बार अपने स्कूल के स्टेज पर गाना गाया था, और गाना था 1973 में रिलीज हुई फिल्म राजेश खन्ना की थी ना, राजा और रानी, उसका एक गाना था जब अंधेरा होता है। इस नन्ही सी उम्र में इस मुश्किल गाने को उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से निभाया कि पूरा स्कूल स्तब्ध रह गया, आश्चर्यचकित हो गया, तालियों की गड़गड़ाहट रुक नहीं रही थी, गूंजता रहा हॉल। और यही एक पल था जब के ने सोचा कि उन्हें सिंगर बनना है। उनके गाए कुछ और गाने सुन लेते हैं, और उसके बाद और भी बातें करेंगे के की। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव की ओर से के को एक छोटी सी ट्रिब्यूट।

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome.
4: You're very good, yaar. Very well done.
0: And Boman Irani?
5: I say this with great respect. This is actually, it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
6: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistik. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
7: How do you know these things? Stop reading my mind.
8: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ
9: रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर आप हैं समर के साथ और सुन रहे हैं लेजेंड्स। आज उसकी दास्तान जो दास्तान कहते कहते सो गया, केके, जिनका गाना याद आएंगे ये पल के बिना हिंदुस्तान के कोई भी स्कूल कॉलेज का फेयरवेल फंक्शन कंप्लीट ही नहीं होता। वो सिंगर जिसका यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है गाना दो दशक बाद भी फ्रेंडशिप एंथम बना हुआ है, जिन्हें लोग नए दौर का किशोर कुमार भी कहते हैं। महबूब ने लिखे ये गाने यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है और याद आएंगे ये पल। ये खूबसूरत बोल थोड़े फीके रह जाते अगर इसमें केके की आवाज की चाशनी नहीं घुली होती। मैं गलत तो नहीं कह रहा? केके, जिन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े सितारों को आवाज दी। सलमान की जब पहली बार तड़प तड़प के दिल से आह निकली थी, उसके पीछे आवाज केके ही थे। शाहरुख को जब आंखों में अजब सी अदाएं दिखी थी, उस वक्त भी केके की ही आवाज थी जो दिल पर असर कर रही थी। उस वक्त पीक पर चल रहे इमरान हाशमी की तो केके ऑफिशियल वॉइस कहलाए जाने लगे थे। केके के गाने मिलेनियल्स के पहले और भाई सच्चे वाले प्यार के हमसफर रहे हैं। आज भी सबके पुराने पीसी की हार्ड ड्राइव के लव सॉन्ग्स वाले फोल्डर में केके के जिंदगी दो पल की, तू ही मेरी शब है, अभी अभी जैसे दर्जनों गाने सेव होंगे। इन्हीं गानों की वजह से केके सबके फेवरेट रहे, मॉडर्न टर्म्स में कहूं तो इंटरनेट डार्लिंग बने। केके ने लव स्टोरीज में सिर्फ गाने ही नहीं गाए बल्कि उनके खुद की लव स्टोरी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। केके सिक्स क्लास में थे, छठी क्लास में उनके साथ पढ़ती थी ज्योति। दोनों की दोस्ती हुई और धीरे धीरे प्यार हो गया। बड़े हुए तो शादी की बात चली। ज्योति के घर वालों ने साफ मना कर दिया, कहा कि भैया पहले कुछ नौकरी वोकरी ढूंढो, कुछ कमाओ वमाओ, इसकी शादी कैसे कर दें तुमसे जब तक तुम कोई नौकरी नहीं कर लेते। अब वो क्या करते, शादी तो करनी थी, ब्याह के खातिर तलाशने लगी नौकरी। मार्केटिंग की जॉब उन्हें मिल गई। ज्योति के घर वालों ने देखा कि लड़का कमाऊ हो गया है तो ज्योति और केके की शादी करवा दी गई, राजी हो गए थे इसके लिए वो। केके ने ज्योति से शादी करने के लिए नौकरी तो कर ली थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो नौकरी करते करते उकता गए थे, पकने लग गए थे। वो तो म्यूजिक के लिए बने थे, यहां उनका दम घुटता था। लिहाजा एक दिन केके ने नौकरी छोड़ दी और सिंगिंग लाइन में ही करियर बनाने की ठान ली। और उनके इस डिसीजन में उनका सबसे ज्यादा सपोर्ट किया उनकी पत्नी ज्योति ने, और फिर पूरी फैमिली भी उनके सपोर्ट में आ गई। आगे क्या हुआ सब कुछ बताऊंगा मैं। उनका सफरनामा जारी है रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। फिलहाल उनके गाए हुए ये बेहतरीन गाने हम सुनेंगे।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
2: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
5: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: हेलो एंड वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। आज हम केके को एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट दे रहे हैं, आज का लेजेंड्स उन्हीं के नाम। तो मैंने आपको बताया कि केके ने गाने की राह चुनी और नौकरी को छोड़ दिया। वैसे एक मार्केटिंग की जॉब थी उनकी, उसमें बिल्कुल मन नहीं लग रहा था और मार्केटिंग में प्रेशर तो आप जानते हैं कितना होता है। तो उन्हें लगा कि मैं अपना पैशन फॉलो करता हूं, शायद मैं कुछ कर जाऊं। पैशन था उनका म्यूजिक। तो उन्होंने क्या किया, एक कीबोर्ड खरीद लिया और एडवर्टीजमेंट्स के लिए जो जिंगल होते हैं ना, वो बनाने लग गए। वो उन्होंने बहुत सारे जिंगल्स गाए साहब, बहुत सारे। आपको शायद पता भी ना हो, ये आवाज सुनिए आप, शायद पहचाने। पहचाना, ये केके की आवाज है। केके ने शंकर एहसान लॉय के लॉय मेंडोंसा के साथ मिलकर एक बेहद फेमस जिंगल गाया था और वो था ये। इस जिंगल के म्यूजिक डायरेक्टर थे रंजीत बारोट। उन्होंने केके से पूछा कि वो जिंगल गाने का कितना पैसा लेंगे। अब केके को तो इंडस्ट्री की रेट्स का कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने कहा जो सबको देते हैं वही दे दीजिएगा। रंजीत ने केके की बात सुनी और पांच उंगलियां उनकी ओर दिखाई। केके को लगा शायद रंजीत 500 रुपए कह रहे हैं, उन्हें लगा यही इंडस्ट्री का रेट होगा, वो मान गए। बाद में जब उनके पास चेक आया तो वो खुशी से उछल गए, क्योंकि चेक 500 का नहीं 5000 का था। थोड़े ही वक्त में केके 3000 से ज्यादा जिंगल्स गा चुके थे, बना चुके थे, और इस काम के केके को पैसे भी अच्छे मिलने लग गए थे। लेकिन कहीं ना सेटिस्फेक्शन मिस था। सालों पहले वो मशहूर गायक हरिहरन से मिले थे और उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया था कि देखो अब ये सब छोड़ दो और मुंबई आ जाओ। उनकी ये बात केके के जहन में थी और केके के मन में ना बचपन से ही अपना एक म्यूजिक एल्बम बनाने की तमन्ना थी। केके ने एक बार फिर हिम्मत दिखाई और इस बार मुंबई के लिए रवाना हो गए। आगे की कहानी एक ब्रेक के बाद बताता हूँ आपको मैं। सुनते रहिए लेजेंड्स, आज केके की कहानी समर की जुबानी।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste bahnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
4: वेलकम बैक। आज हम याद कर रहे हैं केके को हमारे लेजेंड्स केके स्पेशल शो में। जिंगल बनाने के दौरान एक मजेदार वाकया हुआ, आपको सुनाता हूं। साल 1998 की ये बात है। उस वक्त प्रीतम, केके, विशाल शेखर जैसे कई सिंगर और म्यूजिशियंस दिल्ली एड एजेंसीज में काम किया करते थे। प्रीतम और केके आपस में अच्छे दोस्त थे। एक दिन फेमस स्टूडियोज के टॉयलेट में प्रीतम और केके मिल गए। प्रीतम ने टॉयलेट में ही मीटिंग शुरू कर दी। केके से बोले, भाई एक बढ़िया गाना बनाया तेरे लिए। केके बोले, भाई बाहर तो चल ले, यहीं सुनाएगा क्या। जैसे ही टॉयलेट से बाहर निकले, प्रीतम ने सामने कुर्सी पे रखा अपना गिटार उठाया और गाने लगे। केके को गाना बहुत पसंद आया। प्रीतम ने कहा, एक दिन ये गाना मैं तेरे साथ रिकॉर्ड करूंगा। बात यहां खत्म हो गई। सन 2006 आ गया। प्रीतम और केके अब दोनों फेमस बन चुके थे, नाम हो गया था उनका। एक रात प्रीतम ने अचानक केके को कॉल किया, भाई भाई तुझे वो गाना याद है जो मैंने तुझे टॉयलेट के बाहर सुनाया था। आधी रात को नींद से जागे बेचारे केके को बहुत देर दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़े और फिर उन्हें याद आ गया वो इंसिडेंट। प्रीतम ने कहा, बस वही गाना रिकॉर्ड करना है। वो गाना लाइफ इन मेट्रो फिल्म के लिए था। केके ने हामी भर दी। अगले दिन गाना रिकॉर्ड किया, गाना ब्लॉकबस्टर बन गया। वो गाना था वेरी फेमस ट्रैक अलविदा। ओ माय गॉड, कितनी बातें याद आती हैं केके की। मुझे जो भी याद आता जा रहा है मैं आपको बताता जा रहा हूं। बहुत सारी यादें, सिर्फ यादें, अनगिनत यादें वो छोड़कर चले गए हैं। चलिए फिलहाल यहां पर एक ब्रेक ले लेते हैं। इन गानों से जुड़ी आपकी यादें भी आप हमें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर आकर। इंतजार रहेगा।

0: सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: आज लेजेंड्स में केके की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी। वेलकम बैक। साल 1994 में 1994 में केके मुंबई आ गए थे। वहां आकर उन्होंने अपनी एल्बम को लॉन्च करना चाहा, लेकिन राहें इतनी आसान तो होती नहीं है। इस बीच विशाल भारद्वाज से उनकी दोस्ती हो गई। विशाल भारद्वाज को अपना कीबोर्ड वो दे दिया करते थे कंपोज करने के लिए। विशाल इस बीच गुलजार साहब की फिल्म पर काम कर रहे थे। उन्होंने केके को बोला कि यार तेरे लिए काम है, एक गाना है छोड़ आए हम वो गलियां, उसमें शुरुआत की ये लाइंस गानी है जिसमें आलाप भी है, तू गाएगा तो अच्छा रहेगा, गुलजार साहब की फिल्म है। केके ने हाँ कर दिया, उन्होंने गा दिया। जब उन्होंने वो गाना छोड़ आए हम वो गलियां गाया तो ये सुनकर सभी लोग खुश हो गए, सबसे ज्यादा तो गुलजार साहब, बहुत तारीफ की उनकी। लेकिन इसके बाद केके को कोई काम नहीं मिला। माचिस के बाद फिल्म 5 में एक बेहतरीन ट्रैक गाया केके ने, लेकिन वो रिलीज ही नहीं हुई। हम पंछी एक डाल के नाम से एक फिल्म मिली मगर वो भी पूरी नहीं हुई। लिरिक्स डायरेक्टर महबूब से उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। शेखर कपूर की तारा रम पम पम के गाने के लिए महबूब एक दफा गए हुए थे AR रहमान के स्टूडियो। उनके साथ केके भी थे। वहां आए थे इस्माइल दरबार। महबूब जी ने इस्माइल जी से मिलवाया। उन्होंने केके को कुछ महीने बाद मीटिंग के लिए बुलवाया। इसके बाद उन्हें गाना दिया गया तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। पहली बार उन्हें इस तरह का सूफियाना गाना गाने को मिला था। थोड़े घबराए भी, काफी दिन रियाज किया, प्रैक्टिस करते रहे। एक रोज इस्माइल दरबार ने उनको 4 बजे सुबह सुबह 4 बजे उठा दिया और कहा कि अब गाएंगे फ्रेश वॉइस में, और लगभग 1.5 घंटे में गाना रिकॉर्ड हो गया। आज भी अगर आप सुने तो तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही बेस्ट ब्रोकन हार्ट सॉन्ग है। संजय लीला भंसाली जब आए दिन को स्टूडियो तो उनकी आंखें लाल थी। आते ही केके को मिले और उनको गले लगा लिया। बहुत रोए गाने को सुनकर वो। आज भी वो हवा, वो सहरा, वो सलमान की चीख, ऐश्वर्या के आंसू आज भी जहन के सामने आ जाते हैं, दिल को चीर डालते हैं। तो वजह उसकी केके की आवाज ही थी। और फिर उसके बाद केके का वो एल्बम आया जिसे वो बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे। उसने तो बवाल मचा दिया, दिलों में तूफान ला दिया। मुझे याद है उस वक्त एक बहुत ही मशहूर कैसेट की एक चेन हुआ करती थी इंडिया में, और वहां पर ही उनके सीडीज मिला करते थे। मैं एल्बम पल की बात कर रहा हूँ, और अक्सर पल आउट ऑफ स्टॉक होता था, मिलता ही नहीं था, इतनी ज्यादा डिमांड थी इस एक एल्बम की। ब्रेक के बाद और भी किस्से सुनाऊंगा, आप तब तक ये गाने सुनिए।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: माइकी डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: आप सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
5: साल 1999 में सोनी म्यूजिक लॉन्च हुआ और लॉन्च हुए के डेब्यू एल्बम थी पल। हम रहें या न रहें याद आएंगे ये पल, हमें तो के याद आ रहे हैं इस वक्त। मेरा पर्सनल फेवरेट इस एल्बम में एक और था, आपकी दुआ है मुझे प्यार, वो बहुत ऊंचा गाया हुआ है। इसके बाद कई ऑफर आए के को, वो फिल्मों में गाते रहे, काम आगे बढ़ता गया। यह किस्सा याद आता है, सलमान की बजरंगी भाईजान में के का एक गाना था तू जो मिला, बहुत ही अद्भुत गाना, लेकिन इसके बनने की कहानी और भी ज्यादा अद्भुत है। तो हुआ ये कि के अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे छुट्टी मनाने। ऑस्ट्रेलिया आए हुए उन्हें दो दिन ही हुए थे कि उनके पास प्रीतम का फोन पहुंचा। प्रीतम ने के से कहा कि एक गाना अर्जेंटली रिकॉर्ड करना है। के ने बताया कि वो तो फैमिली के साथ सिडनी आए हुए हैं, एक महीने बाद अब आएंगे इंडिया। प्रीतम तो अपने स्वभाव अनुसार बड़बड़ाए हुए थे ही, उन्होंने कहा कि यार कैसे भी हो वहीं से रिकॉर्ड करके भेज दे। इतना कहकर प्रीतम ने लिरिक्स और ब्रीफ के को मेल कर दी। अब के ने ये बात अपनी पत्नी ज्योति को बताई कि उन्हें गाना रिकॉर्ड करना है। ज्योति के पर थोड़ी झुंझलाई, लेकिन के ने समझाया प्रीतम का गाना है, वो भी कबीर खान की फिल्म के लिए। कबीर और के बचपन के दोस्त थे और एक साथ स्कूल में पढ़े थे। खैर के रिकॉर्डिंग करने स्टूडियो पहुंच गए। ये पहली बार था जब वो विदेश में रिकॉर्डिंग कर रहे थे अकेले, ना म्यूजिक डायरेक्टर था ना कोई और जो ये वेरीफाई करता कि गाना अच्छा जा रहा है या बेकार। केके ने आइडिया लगाया कि शायद प्रीतम को ऐसा चाहिए, और उन्होंने गाने की चार चार लाइनें रिकॉर्ड कर करके प्रीतम को भेजना शुरू कर दिया। उन्हें पसंद आई, लेकिन है इसमें एक लेकिन। क्या ये एक ब्रेक के बाद बताता हूँ आपको मैं। स्टे कनेक्टेड सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: हाँ जी, वेलकम बैक। तो केके उन दिनों छुट्टी मनाने गए हुए थे ऑस्ट्रेलिया, जब प्रीतम ने उनको कॉल करके बुलाया, लेकिन वो नहीं आए और वहीं से गाना गाकर उन्होंने रिकॉर्ड कर भेजा। पहली बार ऐसा हुआ कि वो वहां से गा रहे थे, सिडनी से, और गा रहे थे मुंबई में बैठे हुए प्रीतम के लिए। उनके पास उनको म्यूजिक के बारे में गाइड करने वाला कोई नहीं था, कैसे गाना है ये भी नहीं पता। गाना तो था, पहली बात तो कबीर खान की फिल्म थी, उनके दोस्त थे बचपन के। दूसरा, प्रीतम ने उन्हें कहा था, वो चार चार लाइन रिकॉर्ड करके प्रीतम को भेज रहे थे। इस पर प्रीतम ने कहा, भाई ऐसे बार बार मुझे मत भेज, तेरा गाना है तू अपने हिसाब से गा, जैसे तूने पिछले गाने गाए हैं ना वैसे ही गा दे। केके ने ऐसा ही किया। दो ढाई घंटे बाद रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई। केके ने प्रीतम को फाइनल प्रोडक्ट भेजा। प्रीतम को केके का गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने बिना कोई एडिट किए जस का तस गाना सलमान खान और कबीर खान को फॉरवर्ड कर दिया। दोनों को गाना इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने प्रीतम से कहा, इसमें एक अंतरा और जोड़ दो, गाने की लेंथ थोड़ी और बढ़ा दो। कुछ दिन बाद जब इंडिया वापस आए केके, तो नई लाइनें जोड़कर इस गाने को और आगे बढ़ाया गया। तू जो मिला तैयार हुआ, जिस पर आज यूट्यूब पर तकरीबन 7 करोड़ व्यूज हैं। केके हमेशा से मीडिया से दूरी बरतने वाले बहुत ही लोकी इंसान थे। जहां उनके साथ के बाकी सिंगर्स टीवी चैनल्स के सिंगिंग रियलिटी शोज में बतौर जज रेगुलरली नजर आते थे, केके ने सिर्फ एक रियलिटी शो किया था, फेम गुरुकुल। और जब मैंने फेम गुरुकुल का जिक्र किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी शो में अरिजीत सिंह भी आए थे। तो बड़ी कमाल की बात है, देखिए उन्होंने ही जज किया होगा अरिजीत सिंह को। लेकिन फिलहाल बात केके की। पिछले कुछ सालों में वो बतौर सिंगर पूरे तौर से एक्टिव भी नहीं थे, लेकिन हर साल उनका एक आध गाना उतर ही आता था मैदान में। आलिया भट्ट संजय दत्त की फिल्म सड़क 2 में उनका गाना आया शुक्रिया, और ये बहुत ही हिट हुआ। इसके बाद कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की लव आजकल में उनके गाए गाने तन्हा ने भी खूब तारीफें बटोरी थी, लेकिन उनके ऐसे गाने अब इक्का दुक्का ही आ रहे थे। वो दौर ही अलग था जब पूरी एल्बम में केके छाए रहते थे और पूरी एल्बम ही हिट हुआ करती थी। चलिए फिलहाल तो उनके गाए ये गाने सुन लेते हैं एक से बढ़कर एक। मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सक्सेस रेशियो 100% होता है, केके उन्हीं में से थे, जो गा देते थे वो हिट। ये सुनिए।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
2: के ऐसे सिंगर थे जिनके आपको 20 गाने एक साथ बताने को कहा जाए तो शायद आप 20 एक साथ ना बता पाएं, लेकिन अगर आपको एक एक करके सुनाए जाएं गाने तो आपकी आंखें हैरत से चौड़ी होती चली जाएंगी। अरे ये केके ने गाया, हाँ ये भी तो केके ने गाया है, ये भी, अच्छा ये भी। ऐसी कितनी बातें हैं जो केके के बारे में हम सब नहीं जानते, या जानते भी हैं तो उन्हें हमने याद करना नहीं सीखा। लगा कि हम केके के साथ आगे बढ़ रहे हैं, याद तो उन्हें किया जाता ना जिन्हें भूल जाते हो। ये सुनिए। याद आया, साल 1999 में वर्ल्ड कप के बड़े मंच पर उतरने वाली इंडियन क्रिकेट टीम में जोश भरने के लिए बने थीम सॉन्ग जोश ऑफ इंडिया को केके ने अपनी आवाज दी थी। इस गाने के लिरिक्स तो जोशीले थे ही, लेकिन उसे अजहर एंड कंपनी की रगों में उतारने का काम किया था केके की दमदार आवाज ने। इस सॉन्ग ने न सिर्फ इंडियन टीम बल्कि इंडियन फैंस को भी बहुत इफेक्ट किया था, बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था, बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था। इस गाने ने टीम में जीत का जज्बा भर दिया था और इंडियन क्रिकेट फैंस के बीच काफी पॉपुलर हुआ था ये गाना। हालांकि ये बात अलग है कि उस वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट टीम सुपर सिक्स स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई थी। फिर आया साल 2022, 2022 की 31 मई। ये वो तारीख है जब केके की एक कॉन्सर्ट के दौरान तबीयत बिगड़ी और वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, अपने परिवार में एक बेटा और एक बेटी सहित एक पत्नी को छोड़कर वो चले गए हमेशा के लिए, जहां से कोई लौट कर नहीं आता। केके आज हमारे बीच नहीं है, पर वो जिंगल से लेकर फिल्मी गीतों, एल्बम से लेकर हर जगह पर मौजूद है। चलिए उन्हें याद करते हुए फिलहाल उन्हीं के गाए हुए ये गाने सुन लेते हैं।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: माइकी डोने मम्मा
2: ड्यूटी।
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
5: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: खैर, भीगी तो हैं आंखें और दिल भी, मगर बहुत खूबसूरत सा कुछ पढ़ा तो मुझे लगा कि आपसे भी शेयर कर लेता हूं, आपको भी सुना देता हूं। सुनिएगा, खबर आती है कि चले गए एक आदमी जो पिछले दो दशकों से एक के बाद एक दिल चीरने, आंख भिगोने, मन मसोसने, पहले प्यार के एहसास को नाम देने वाले गाने गा रहा था, अचानक से चला गया। क्या कहेंगे आप इस पर कि तुम सा कोई ना होगा के? काश तुम न जाते के, अभी तो तुम्हें और गाना था, हाय तुम्हारी आवाज अभी तो और सुननी थी। यह भी कोई उम्र होती है जाने की, जो शब्दों के खिलाड़ी हैं वो लिख देंगे उफ तुम चले गए, जैसे अमावस के दिन आसमान से चांद चला जाता है, पर मौजूद रहोगे तुम याद में, जैसे चांद न दिखते हुए भी होता है, जैसे चाय में चीनी न दिखते हुए भी होती है, फलाना फलाना पता नहीं क्या क्या। कैसे बताए कोई कि अचानक से उसी बचपन और तरुणाई के बीच की रेखा पर पहुंच गए हैं, जहां सीने में दिल भी है, इसका एहसास पहली बार हुआ था और आज भी वो दिल वैसा ही कसक सा रहा है, और डर के मारे तुम्हारा गाना सुनने की भी हिम्मत नहीं हो रही। संभालने वाला कोई नहीं है, हम में से न जाने कितने लोग वापस 16-17 साल के किशोर बन गए होंगे, जिनको पहली बार जब इश्क हुआ था तब तुम उनके साथ थे, और पहली बार जब दिल टूटकर चकनाचूर हुआ था तो तुमने उनके आंसू संभालने का एक बहाना दिया था। स्कूल के फेयरवेल पर हम रहें या न रहें, कल याद आएंगे ये पल, बजे बिना कहां कुछ पूरा होता था, और तुम खुद भी तो उन स्कूलों की यादों का हिस्सा थे, एक दोस्त जैसे। नाम भी वैसे ही था तुम्हारा, के, जैसे अपने बचपन के जिगरी यार को बुला रहा हो कोई। अरसे बाद लैंडलाइन पर वही दूर शहर से कॉल करते हो, और के बता कैसा है यार, लाइफ कैसी चल रही है, सुनना फ्री है तो घर आ जा। तुम्हारे गानों की सीडी एक्सचेंज किया करते थे लोग, पता है ना, अगर कोई किसी को इम्प्रेस करना चाहता था तो कहता था कि हम तो केके के फैन हैं, भले किसी को तुम्हारा पूरा नाम याद हो ना हो, लेकिन केके का फैन होना माने अच्छे म्यूजिक टेस्ट की गारंटी। कितने तो लोग थे जो अपने मन में जन्नत का प्रपोजल सीन बिठाए

फिर से मिलेंगे। मैं समर हूँ, ये रेडियो मसी 24/7 लाइव है। भगवान न करे कि अगली बार जब मैं आऊं तो ऐसी कोई कहानी लेकर आऊं जो अब अचानक हमें छोड़कर चला गया हो। लेकिन मैं सुनाता रहूंगा ऐसे ही शख्सों की कहानियां जो दास्तान बन गई, सदियों तक सुनाई जाएंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। बाय, नमस्कार, टेक केयर।

0: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. Raat akeli hai,
1: aankhon mein to kya hum

0: सिर्फ अकेली है।
1: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
2: जोश में रहो।
3: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
0: रात अकेली है
1: तो क्या, हम तो

0: रात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

रात अकेली है तो क्या, हम तो

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: नवराई माझी लाडाची लाडाची ग, आवडतीला चंद्राची चंद्राची।

0: नशा है। और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना,
1: रात अकेली है। जोश में रहो।
2: तेरे को बहुत मजा आता है ना सीधा साधा लोगों को फूल करने में।
3: तू भी तो उसको फूल करती है, लव मेरे को करती है और घूमने को उसके साथ जाती।
2: ओह शट अप, एक दिन गॉड तुमको बहुत पनिश करेगा। क्या हुआ?
3: यू आर राइट, चींटी बनकर काटा।
2: ट्विंग
3: पनिशमेंट ओवर। ए अभी चलना, काय को इतना भाव खाती है? आई लव यू यार।
2: तू ऐसा कितनी लड़कियों को बोला?
3: हां सिर्फ तेरे को सैंड्रा। आई मीन सुजी, सिर्फ तेरे को रोजान, मेरी लैला।

चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे

बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

एक ही ईश्वर है, उसका नाम ही सत्य है। There is one God and His name is the truth.

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है। मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

0: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: यू नो व्हाट, थोड़ी सी देर से मैं ये ढूंढ रही थी कि मेरे हाथ इतने खाली खाली क्यों लग रहे हैं। कुछ तो मिसिंग है। मैं क्या चीज़ रोज लाती थी और मैं भूल गई हूँ आज। और मैंने अपने दिमाग पर पूरा जोर डाला। अरे, और मुझे याद भी आ गया है। नहीं, अभी याद है, अभी रेडियो मसीह 24/7 लाइव पर मैं आज इन पर मसीह मॉर्निंग शो पर वंस अगेन आपसे मुलाकात करने आ चुके हैं। और मुझे अभी भी याद आया कि मैं आज अपनी वाटर बॉटल जो है ना वो घर पे छोड़ आई हूँ। हमेशा हाइड्रेशन का ज्ञान देने वाली लड़की आज अपनी वाटर बॉटल भूल आई है। ओ हो, मतलब अपना

0: पार्ट ऑफ वो हो चुका है, बॉडी पार्ट हो चुका है ये कि मेरे हाथों में बॉटल रहती ही रहती है. अब मतलब बहुत ज़रूरी है यार. यू नो व्हाट, पानी के साथ एक साइकोलॉजी है. अगर वो दिखाई नहीं देगा ना तो आपको प्यास कम लगेगी, और अगर आपके हाथ में बॉटल होगी तो आपको बहुत प्यास लगेगी एंड आप हाइड्रेटेड रहेंगे. तभी तो सेलिब्रिटीज़ जहाँ जाते हैं अपनी वाटर बॉटल के साथ नजर आते हैं. हाँ हाँ हाँ, चलो कोई नहीं, आज वंस इन अ वाइल मैं तो ड्रॉप कर आई हूँ, बट यू स्टे हाइड्रेटेड. सिंगापुर की ह्यूमिडिटी सबसे नहीं झेली जाती. आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है. डोंट गो एनीवेयर.
1: यू आर ट्यून्ड इन टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग द वर्ल्ड बॉलीवुड एंटरटेन्ड एनीटाइम एनीवेयर.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: माइकी डन है मम्मा।
2: जूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, सुन टका टका। जोश में
2: बहुत सारे एक्टर्स आए हैं, बहुत सारे एक्टर्स गए हैं, लेकिन वो जो प्यार है, वो जो ममता है, वो जो इंसानियत है, बहुत कम एक्टर्स ही दिखा पाए हैं। डेफिनेटली मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, एंड बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस जो सिंगल हैंडली मूवी को पूरा पुश कर दें, पूरी मूवी संभाल लें, बहुत कम निकल कर आए हैं। बट उनमें से एक है जो फीमेल सेंट्रिक, जिन्होंने काम भी किया है और उनका कंटेंट भी लोगों ने पसंद किया है। शी इज नन अदर देन कौन? तापसी पानू, राइट? सो ये एक मूवी के साथ कमबैक कर रही हैं। 3rd of September को करीबन उस मूवी का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। मूवी का नाम है गंधारी, एंड इसमें एक ऐसी मॉम बनी है ये जो अपनी बेटी को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करेंगी, बहुत सारे चैलेंजेस, राइट? सो ये एक्टर्स खुद को भी चैलेंज देते रहते हैं कि इस बार कुछ अलग किरदार में जाएंगे और लोगों को एंटरटेन करके आएंगे। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। Don't go anywhere. Aati hu main in a short while.
3: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: एक जमाना था जब बहुत सारे डॉन हुआ करते थे और बॉलीवुड में बड़े बड़े सुपरस्टार्स को परेशान किया करते थे। तो इससे कम से कम ये तो क्लैरिफाई था ना कि ये लोग बुरे लोग हैं और ये लोग अच्छे लोग हैं जो एक दूसरे को ट्रबल कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि डॉन कल्चर के ऊपर तो चल चुकी है बहुत बड़ी कैची, ठीक है। अब उसमें हो क्या रहा है कि जो एक ही इंडस्ट्री के लोग हैं जो पुराने हो चुके हैं और वो आजकल के यंगस्टर्स को या फिर कुछ ही साल पहले जो लोग आए हैं उनको अपने से ज्यादा फेमस होता हुआ देखते हैं ना, तो वो डॉन जैसा बिहेवियर करने लगते हैं। मतलब उनके अंदर का शैतान जाग सा जाता है। सो चलिए इसी पर यो हनी सिंह ने बताया है कि चाहे तो वो एक महीने में 5-5 गाने रिलीज करते, लेकिन म्यूजिक लेबल कंपनीज जो हैं बड़ी से बड़ी, उनमें से कोई एक कंपनी है जो उनको बहुत ट्रबल आउट कर रही है, बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जिसके चलते ये थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं। सो डेफिनेटली आपको लगता है कि इन एक्टर्स की लाइफ आसान है, बट आई डोंट थिंक सो। मतलब मुझे पहले भी नहीं लगता था और अब तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में
0: इमेजिन सिंगापुर की सड़कों पर आपको इंसान से अलग नहीं ज़ॉम्बीज की बात नहीं कर रही हूँ मैं रोबो की बात कर रही हूँ राइट मतलब इंसान जैसे रोबो नजर आए तो कैसा लगेगा मतलब मेरे जैसा इंसान होगा ना तो ग्रीन बत्ती होने के बाद भी उसे देखता रहेगा कि यार ये क्या कर रहा है काम जरा मुझे देखने तो यार मेरे आधे चलान तो उन्हें देखने के चक्कर में हो जाएंगे। सो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे अनुपुरा आपको बताना चाहेगी कि रिसेंटली इस टॉपिक को लेकर भी एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है और कहां से हुआ है चाइना से। चाइना ने डिप्लॉय किए हैं ट्रैफिक रोबो कॉप्स। हाँ जी वहां के कॉप्स की ड्रेस पहने रोबो नजर आएंगे एंड ज्यादा कुछ नहीं कर सकते वो ठीक है अभी उनके हाथ में इतना कमांड भी नहीं दिया है कि वो चालान वगैरह बना देंगे लेकिन हाँ वो जो ऑफेंडर्स हैं उन्हें वो वार्न कर सकते हैं ट्रैफिक मैनेज कर सकते हैं लोगों को डायरेक्शन से रिलेटेड असिस्टेंस दे सकते हैं पार्किंग एंड ट्रैफिक रूल समझा सकते हैं लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि ये रोबोट आपको रोककर एक लंबा चालान डिस्कशन करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। सो बाय द टाइम जो टेक्नोलॉजी है उसको इस तरीके से उतारा जा रहा है कि उसे देखकर मजा भी आए और उसे फॉलो करने का मन भी करे। आज ये नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है डोंट गो एनीवेयर आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट बाय
2: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.